मीडियम वेव 396.2 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की पहली तिथि, तदनुसार 18 जून सन 2026। इस समय प्रातः के 5:56 हुए हैं। अब हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। प्रातः के 6 बजने को है। थोड़ी देर में हिंदी समाचार अब हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले कर रहे हैं।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवास

0: आ गया। उन्होंने विकासशील देशों की आर्थिक मजबूती और वैश्विक संपर्क बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फोन डेर लेयन, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी सहित कई नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
0: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। इसके साथ ही दोगुने अंशदान से संबंधित सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो जाएगा। इससे भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। वस्त्र, चमड़ा, समुद्री उत्पाद, इंजीनियरिंग और प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र को विशेष फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए आज मतदान होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वैद्यनाथ राम, कांग्रेस उम्मीदवार प्रणब झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी चुनाव लड़ रहे हैं। झारखंड विधानसभा में मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 95 रन से हरा दिया। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में अब भारत का मैच 21 जून को दक्षिण अफ्रीका से होगा। फीफा विश्व कप में इंग्लैंड ने अपने पहले मैच में क्रोएशिया को 4-2 से हरा दिया। कप्तान हैरी केन ने 2 गोल किए। ग्रुप के में पुर्तगाल और कांगो का मैच 1-1 से ड्रॉ रहा। इस मैच के साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो विश्व कप खेलने वाले सबसे उम्रदराज आउटफील्ड खिलाड़ी बन गए। अर्जेंटीना ने अल्जीरिया को 3-0 से हराया। लियोनेल मेसी ने हैट्रिक लगाकर विश्व कप में 16 गोल पूरे किए और मिरोस्लाव क्लोजे के कीर्तिमान की बराबरी की। ऑस्ट्रिया ने जॉर्डन को 3-1 और नॉर्वे ने इराक को 4-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव और FM बैंड पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी जगदलपुर को। इस समय सुबह के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आरंभ करते हैं देश वंदना से। कहीं मंदिरों की घंटियां हैं, कहीं मस्जिदों की अजान, कहीं लोकगीतों की मिठास है तो कहीं वीरों की अमर गाथाएं। अनेकता में एकता की मिसाल हमारा भारत सबसे निराला है। हिमालय की ऊंची चोटियों से लेकर सागर की लहरों तक, खेतों की हरियाली से लेकर शहरों की चहल पहल तक भारत की आत्मा हर रंग में झलकती है।

समूह स्वर में अभी आपने सुनी देश वंदना। आइए अब सुनते हैं सी लक्ष्मीचंद के स्वर में ये भजन। श्रद्धा और सबूरी का संदेश देने वाले शिरडी के साईं बाबा आज भी करोड़ों भक्तों के हृदय में विराजमान हैं। साईं का नाम लेते ही मन को एक अद्भुत शांति और विश्वास का अनुभव होता है। वे प्रेम, करुणा, सेवा और मानवता के प्रतीक हैं।

जब संसार के सारे सहारे छूट जाए तब प्रभु का द्वार ही सच्चा आश्रय बनता है। ईश्वर के शरण में हर दुख हल्का हो जाता है और मन को नई शक्ति मिलती है। आइए इसी भाव को व्यक्त करता हुआ हरिओम शरण का ये मधुर भजन सुनते हैं कार्यक्रम वंदना के अंत में।

0: भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अभी आपने सुना। ये आकाशवाणी जगदलपुर है। इस समय प्रातः के 6:20 हुए हैं। लीजिए सुनिए आज का चिंतन।
1: आदत, स्वभाव और व्यवहार वृत्ति का निर्माण करते हैं। ये वृत्तियां ही मनुष्य की पहचान बनती हैं। देव वृत्ति, संत वृत्ति, मनुष्य वृत्ति और पशु वृत्ति, इस प्रकार वृत्तियों का विभाजन किया जा सकता है। देव वृत्ति सुख दुख या हर्ष विषाद से ऊपर की वृत्ति है। कभी कभी हमें ऐसे व्यक्तियों का सानिध्य प्राप्त हो जाता है जिनका स्वभाव हर्ष विषाद सब में समान रहता है। ऐसे वृत्ति के मनुष्य पूजनीय होते हैं। उनके विषय में बोलचाल में लोग कहते सुने जाते हैं कि वे तो देवता हैं। संत वृत्ति के मनुष्यों का स्वभाव होता है कि जब सुख का समय नहीं रहा तो दुख का समय भी कब तक रहेगा। उनके लिए सुख या दुख सब समान होते हैं। वह न तो सुख में फूले समाते हैं और न दुख में अधीर होते हैं। संत वृत्ति के पुरुष दोनों स्थितियों को भाग्यकृत मानकर समता धारण करते हैं। तीसरी वृत्ति मनुष्य वृत्ति होती है। इस वृत्ति वाले व्यक्ति पर सुख दुख, सर्दी गर्मी, गरीबी अमीरी सबका प्रभाव पड़ता है। उसके व्यवहार से आसानी से यह समझा जा सकता है कि यह व्यक्ति इन दिनों सुख का अनुभव कर रहा है या दुख का। वह सुख को अपने पुरुषार्थ का फल और दुख को दूसरों के द्वारा दिया गया मानकर उनसे द्वेष करने लगता है और अपने दुख को बढ़ाता रहता है। दूसरों की बुराई में भी वह आत्म प्रशंसा ग्रस्त रहता है। वह दुख में दूसरों की सहानुभूति और सुख में दूसरों से प्रशंसा चाहता है। खुशी और गम तो धूप छाव के समान है। इस सुख दुख के जोड़ों को यदि हम सोचें कि जिस प्रकार सर्दी में हमें धूप अच्छी लगती है और गर्मी में बुरी, लेकिन सर्दी में जिस स्थान पर हम अभी धूप का आनंद ले रहे होते हैं थोड़ी देर में वहां छांव भी आ सकती है। उसी प्रकार गर्मी के दिनों में अभी हम जहां नीम की शीतल छांव में बैठे हैं थोड़ी देर में वहां धूप भी आ सकती है। अर्थात जब सुख स्थायी नहीं रहा तो दुख भी स्थायी नहीं रहेगा। सुख दुख मनुष्य के जीवन की परीक्षा की घड़ी हैं। एक बात और भी है कि जब दुख आता है तभी सुख का महत्व समझ में आता है। यदि दुख न आए तो मनुष्य सुख को याद करना ही भूल जाए। जब मनुष्य यह सोचता है कि सुख भी मेरे कर्मों का फल था और दुख भी मेरे कर्मों का फल ही है तो उसमें दुख सहने की हिम्मत आ जाती है। मनुष्य को लगता है सुख के क्षण जल्दी बीत गए और दुख के दिन काटे नहीं कट रहे, इससे वह दुखी होता रहता है। चौथी वृत्ति पशु वृत्ति होती है। उसे न तो खुशी में इतराने के अवसर होते हैं और न दुख में रोने के, क्योंकि उसका कोई स्थायी समाज नहीं होता। हाँ, यह जरूर है कि इस वृत्ति के लोगों को सुख में बहुत साथी मिल जाते हैं, वे ही साथी दुख में उसे भूल जाते हैं। ऐसे वृत्ति वाले मनुष्य अन्य को कष्ट देकर खुश होते हैं और सुख में देखकर उनसे ईर्ष्या करते हैं। इस वृत्ति वालों को सुख और दुख दोनों स्वयं ही भोगने होते हैं। मनुष्य जीवन में ये चारों वृत्तियां देखी जा सकती हैं। एक ही व्यक्ति के कार्य कभी देव वृत्ति के तो कभी संत वृत्ति के, कभी मनुष्य वृत्ति और कभी पशु वृत्ति के भी हो सकते हैं। यह मनुष्य के संस्कारों पर निर्भर करता है, लेकिन जिसके मन में कृतज्ञता के भाव और दूसरों का सम्मान करने के संस्कार होते हैं उनकी प्रायः देव और संत वृत्ति होती है।
0: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, आलेख और स्वर था जयचंद जैन का। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। प्रातः के 6:25 हुए हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस का गायन, स्वर उषा मंगेशकर के और संगीत निर्देशक हैं सतीश भाटिया।

श्री राम की सुहावनी गाथा को सर्वप्रथम भगवान शंकर ने वाणी दी, उसे जगत जननी पार्वती को सुनाया। फिर वही कथा मुनि याज्ञवल्क्य ने मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज को सुनाई। ये कथा फिर बारह क्षेत्र में तुलसीदास ने अपने गुरुजी से सुनी, किंतु तब उनके अपने अनुसार अपने लड़कपन के कारण उसे भली प्रकार समझ नहीं सके। फिर भी जब गुरुजी ने बार बार वही कथा कही, तब अपनी अल्पबुद्धि के अनुसार उसे समझा और अपने संतोष के लिए उस कथा की रामचरितमानस के रूप में रचना की। राम कथा को तुलसीदास जी ने पंडितों को विश्राम देने वाली, सभी मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली बताया है। ये कथा नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती अर्थात दुर्गा है। स्वयं तुलसीदास के लिए ये उनकी माता हुलसी के समान हृदय से हित करने वाली है।

अभी आपने सुना श्री रामचरितमानस का गायन। आकाशवाणी का ही जगदलपुर केंद्र है। प्रातः के 6:35 हुए हैं। आइए सुनते हैं कृषि समय की बेड़ा खाड़ा चौक गोठ।

काश्तकार भाई बहन मन लिम्न फसल जो कमा निकाले निको जल निकासी बीती दुई मुटिया भुई अच्छा रहे से लिम्न बूटा के रोप तो काजे 1 मीटर लाम 1 मीटर ओसार और 1 मीटर गढ़िया खोदरा खोन तो राय खोदरा खोन तो बेरा ऊपर चुमाटी के भीने और खाले चुमाटी के भीने संगा तो राय कसन बोले ऊपर चुमाटी उपजाऊ रहे से और ए माटी के बूटा मंडा तो बेरा खत संगे ए माटी के देव दे तो राय बूटा रोप तो पहले खोदरा पीछे 25 ले 30 किलो

0: 10 kilo वर्मी कंपोस्ट और 1 किलो सिंगल सुपरफास्फेट संगे 100 ग्राम मिथाइल पैराथियन चूर्ण के माटी ने मिसाउन खुदरा भित्रे भर तो रहा आली पानी तरी चु माटी मृत्यु बोले एक बोले खुदरा ने भरुन दे तो रहा काशकार भाई बहन मन लिमू ने सूक्ष्म तत्व बल्ले जिंक कापर मैग्नीज लोहा जो कमी होले बूटा ने कई प्रकार चु बीमारी जन्म धरुक सके बूटा ने जिंक नाव चो जीनिस कम होले बूटा चो पाना फुटी हुए से और पाना मन चो नश चो मंजी रंग हल्का पड़े से जे चो लागुन लिम्हु फर चो झड़तो और फर चो जुगे निबाड़तो लक्षण दखा पड़े से अपने मैग्नीस नाव चो जीनिस चो कमी रले बूटा चो पाना चो मंजी गता चो भाग धीरे धीरे हल्का रंग होते जाए से काशकार भाई बहन मन लिम्हु बूटा ने ये सूक्ष्म तत्व मंचो कमी के दूर कर तो काजे जिंक सल्फेट 500 ग्राम कॉपर सल्फेट 300 ग्राम मैग्नीज सल्फेट 200 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट 200 ग्राम और बोरिक सल्फेट 100 ग्राम फेरस सल्फेट 200 ग्राम सीथर चूना 900 ग्राम के भिने भिने घोलून 100 लीटर पानी में मिसाउन बूटामन ने एचो छिड़काव करून देतो रहा हर मई के फेर सांगे से काश्तकार भाई बहन मन लिम्बू बूटा ने ये सूक्ष्म तत्व मंचो कमी के दूर कर तो काजे जिंक सल्फेट 500 ग्राम कॉपर सल्फेट 300 ग्राम मैग्नीज सल्फेट 200 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट 200 ग्राम बोरिक एसिड 100 ग्राम फेरस सल्फेट 200 ग्राम सीतर चूना 900 ग्राम के भिने भिने घोलून 100 लीटर पानी ने मिसाउन बूटा मन ने ये छिड़काव करून देते रहे ये छिड़काव जुलाई महीना ने कर ले अच्छा रहे से काश्तकार भाई बहन मन लिम्बू बूटा ने कीड़ी मन बोले जाऊटुआत असन कीड़ी ने गोटुक हो से लिप माइनर नाव चो फिलफिली जोन पाना मन ने गुड़ी धराउ पाना के काना करते जाए से जे चो लागुन बूटा चो पाना सुखुन जाए से ये चो रोकथाम काजे डाइमिथोएट 2 मिलीलीटर के 1 लीटर पानी में मिसाउन दे तो रहा नहाले इमिडाक्लोप्रीड 1 मिलीलीटर के 3 लीटर पानी में मिसाउन बूटा मन ने ये चो छिड़काव करून दे तो रहा असने गोटुक नींबू चो तितली हो से जोन पाना मन के कतरून नुकसान हम रहा से ये चो रोकथाम काजे फ्यूनाल फास 1.5 मिलीलीटर के 1 लीटर पानी में मिसाउन लिम्बू बूटा ने ये चो छिड़काव करतो रहा लिम्बू बूटा ने गोटोक सिट्रस सिल्ला नाव चो कीड़ी हो से जोन बूटा चो कोरो भाग चो रस के चुहके से जे चो लागुन बूटा चो बाढ़ती थेबे से ये कीड़ी चो पीला मन चिपचिपा पसना निस्काउन ये चो नुकसान कर सो और ये चोले फपून धरुआ जे चो लागुन लिम्बू बूटा आप लोग खाना तैयार करू नहीं सकुआ ये चो रोकथाम काजे डाइमिथोएट 2 मिलीलीटर के 1 लीटर पानी में नहाले इमिडाक्लोप्रीड 1 मिलीलीटर के 3 लीटर पानी में घोल तैयार करू लिम्बू बूटा ने छिड़काव कर तो रहा काश्तकार भाई बहन मन असन सांगलो वाट ने नींबू बगीचा तैयार कर लो ने फायदा बोले जन मिले रे और आमदनी बोले जो भी मिले रे
1: कृषि समय के बेड़ा खाना चौगोट का प्रसारण अभी आपने सुना। ये आकाशवाणी जगदलपुर है। इस समय प्रातः के 6:40 हुए हैं। हुलहुले कार्यक्रम में आप सुनिए गोरस द्वानी पाड़। वादा कलाकार हैं श्रीधर और साथी

श्रीधर और साथियों का बजाया गोरस दुआनी पाड़ अभी आपने सुना। कार्यक्रम था हुलहुली, आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय प्रातः के 6:50 हुए हैं। कार्यक्रम विवरण में अब सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के संक्षिप्त रूपरेखा। आज शाम 4 बजे कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। अब से कुछ देर बाद सुबह 7:05 पर सुनिएगा कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर। आकर्षण होंगे काव्य सरिता, जिसमें सुनिएगा खुदेजा खान की कविता और सजेगी मधुर गीतों की मधुरिमा। सुबह 8:30 पर हम आपको सुनवाएंगे विभिन्न बोलियों में लोकगीतों का कार्यक्रम।

लोक मंजरी पाटा विनार। लोकगीतों के इस कार्यक्रम में सुबह 9 बजे सुनिएगा आयतु नाग और साथियों के गाए ध्रुवी लोकगीत। एक ही फिल्म से इस कार्यक्रम में आज सुबह 9:30 पर आप सुनेंगे फिल्म जवानी दीवानी के गीत। सुबह 10 बजे गुलशन कार्यक्रम में हम लेकर आएंगे शास्त्रीय रागों पर आधारित फिल्मी गीत। गुड़दू लोकगीतों के इस कार्यक्रम में सुबह 10:30 पर आप सुन सकते हैं ध्रुवी आदिवासी लोकगीत। गायक कलाकार होंगे बालमती बघेल और साथी। कार्यक्रम एक ही कलाकार हम पेश करेंगे सुबह 11 बजे। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित होगा संगीतकार अमाल मलिक पर। गैर फिल्मी गीतों और गजलों से सजा गुलदस्ता कार्यक्रम का आनंद आप लेंगे सुबह 11:30 पर। दैनिक कार्यक्रम कला और कलाकार का प्रसारण हम करेंगे दिन के 12 बजे। 12:30 पर सुनिएगा ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर द्वार। कृषि समय की बेड़ा खाड़ा चौगोट का पुनः प्रसारण किया जाएगा दिन के 1:05 पर। श्रोता सुमन फरमाइशी फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम आप सुनते हैं रोजाना 1:10 पर। दोपहर 2:30 पर प्रसारित किया जाएगा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। हमारी सांध्यकालीन सभा में आज शाम 5:05 पर सुनिएगा समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम भारत सरकार आपके द्वार हल्बी बोली में। युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी आप सुनते हैं हर शाम 5:10 पर। आज ये कार्यक्रम हिंदी भाषा में होगा। शाम 6:35 पर हम आपको सुनवाएंगे हल्बी भजन। गायक स्वर होंगे मधुराम और साथियों के। दैनिक कार्यक्रम बस्तर के स्वर शाम 7 बजे। शाम 7:21 पर हम प्रसारित करेंगे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। दांडामाली कार्यक्रम में रात 8 बजे सुनिएगा ध्रुवी लोकगीत। गायक कलाकार होंगे गोविंद राम और साथी। बच्चों के लिए हल्बी बोली में कार्यक्रम पिलामन का जिगोट आप सुन सकते हैं आज रात 8:30 पर। इसमें आज वीर शहीद झाड़ा से राह पर जानकारी प्रस्तुत करेंगे बलवीर सिंह कच्छ। रात 9:15 पर कार्यक्रम ग्राम पंचायत के विकास गाथा के अंतर्गत सुनिएगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी अधिनियम 2005 पर एक वार्ता। वार्ताकार होंगे बलबीर सिंह कच्छ। कार्यक्रम धुमकली में आज रात 9:30 पर आप आनंद ले सकते हैं भतरी नाड़ गीत का। गायक स्वर होंगे हीरा सिंह और साथियों के। रात 10 बजे हम लेकर आएंगे गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गुलदस्ता। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा रात 10:30 पर। श्रोताओं ये थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित और अनुप्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों के संक्षिप्त जानकारी। मीडियम वेव और FM बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। प्रातः के 6:55 होने को है। क्रमशः संस्कृत और हिंदी समाचार अब हम आकाशवाणी दिल्ली से

यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय
स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत करेंगे। इससे पहले फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान श्री मोदी ने विभिन्न सत्रों में हिस्सा लिया तथा कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में वैश्विक शासन, आर्थिक विकास और ग्लोबल साउथ के देशों से जुड़े मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा गया। उन्होंने विकासशील देशों की आर्थिक मजबूती,

तीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। फ्रांस के ईयू में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने संतुलित आर्थिक विकास, महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला और बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण से जुड़ी तीन महत्वपूर्ण घोषणाएं अपनाई। बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल माहौल संबंधी घोषणा का भारत सहित ब्राजील, मिस्र और दक्षिण अफ्रीका जैसे कई देशों ने समर्थन किया। इसमें ऑनलाइन सुरक्षा बढ़ाने, डीप फेक और बच्चों के शोषण जैसी चुनौतियों से निपटने पर जोर दिया गया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। इसके साथ ही दोगुने अंशदान से संबंधित सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो जाएगा। इससे भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। वस्त्र, चमड़ा, समुद्री उत्पाद, इंजीनियरिंग और प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र को विशेष फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए आज मतदान होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम, कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिसीमल नथवानी चुनाव लड़ रहे हैं। झारखंड विधानसभा में मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ प्रो लीग हॉकी मैच में भारतीय पुरुष टीम ने मौजूदा विश्व चैंपियन जर्मनी को 3-1 से हरा दिया। भारत की ओर से मनदीप सिंह, शिलानंद लाकड़ा और नीलकांत शर्मा ने गोल किए। ये मनप्रीत सिंह का 413वां अंतर्राष्ट्रीय मैच था। उन्होंने भारत के लिए सबसे अधिक मैच खेलने का कीर्तिमान बनाया। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 95 रन से हरा दिया है। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में अब भारत का मैच 21 जून को दक्षिण अफ्रीका से होगा। आयुष मंत्रालय ने कहा है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले योग संगम कार्यक्रम के लिए देश भर में 1,70,000

हर सवेरा एक नया अवसर लेकर आता है, जो जागता है वही अपनी मंजिल पाता है। सुप्रभात श्रोताओं, मैं हूं आपकी अपनी रेडियो साथी आशा दुल्हानी। आप सभी का स्नेह भरा स्वागत करती हूं। इस नई सुबह के साथ हम लेकर आए हैं रोचक जानकारियां और मन को छू लेने वाली मधुरिमा। तो आइए इस नए दिन की शुरुआत करें एक अच्छी सोच और नई ऊर्जा के साथ। तो जुड़ जाइए मेरे साथ आज नमस्कार जगदलपुर के क्रम में।

श्रोताओं, आज का दिन एक बहुत ही खास संदेश लेकर आया है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे विषय की जो हमारे थाली से लेकर धरती के भविष्य तक जुड़ा हुआ है। आज है 18 जून और हर वर्ष 18 जून को सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे यानी सतत भोजन दिवस मनाया जाता है। ये दिन हमें बताता है

कि भोजन केवल स्वाद और पेट भरने का माध्यम नहीं, बल्कि प्रकृति, संस्कृति, कृषि और आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी का भी प्रतीक है। श्रोताओं, जब हम भोजन की बात करते हैं तो अक्सर उसके स्वाद, सुगंध और विविधता पर ध्यान देते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हमारी थाली तक पहुंचने वाले अन्न, फल, सब्जियां और अन्य खाद्य पदार्थ किन संसाधनों, कितनी मेहनत और कितनी प्राकृतिक संपदाओं के प्रयोग से तैयार होते हैं। ये दिवस हमें यही सोचने के लिए प्रेरित करता है कि हमारा भोजन ऐसा हो जो पर्यावरण के अनुकूल हो, किसानों का सम्मान करे और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी सुनिश्चित करे। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में ये विषय और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारे खेत, हमारे किसान और हमारी पारंपरिक खाद्य संस्कृति सदियों से प्रकृति के साथ संतुलन बनाने की सीख दे रही है। मोटे अनाज, स्थानीय फल सब्जियां, मौसमी खाद्य पदार्थ और पारंपरिक व्यंजन न केवल पौष्टिक होते हैं, बल्कि पर्यावरण पर भी अपेक्षाकृत कम दबाव डालते हैं। आज दुनिया के सामने खाद्य अपव्यय यानी फूड वेस्टेज एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। लाखों लोग जहां भोजन के अभाव से जूझ रहे हैं, वहीं बड़ी मात्रा में भोजन बर्बाद भी हो रहा है। हमें भोजन जितनी आवश्यकता हो उतना ही लेना चाहिए। भोजन का सम्मान करें और उसे व्यर्थ न जाने दें। इसके साथ ही स्थानीय किसानों से खरीदे गए उत्पादों को प्राथमिकता देना, जैविक खेती को बढ़ावा देना और मौसमी खाद्य पदार्थों को अपनाना भी सतत भोजन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। जब हम स्थानीय उत्पादों को चुनते हैं तो न केवल किसानों की आय बढ़ती है, बल्कि परिवहन में लगने वाली ऊर्जा और प्रदूषण भी कम होता है। श्रोताओं, भोजन केवल शरीर का पोषण नहीं करता, ये हमारी संस्कृति, परंपराओं और भावनाओं से भी जुड़ा होता है। घर की रसोई में बनने वाले पारंपरिक व्यंजन हमें अपनी जड़ों से जोड़े रखते हैं। इसीलिए आवश्यक है कि हम अपनी खाद्य विरासत को सहेजें और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं। तो आइए इस सतत भोजन दिवस पर हम एक छोटा सा संकल्प लें। भोजन का सम्मान करेंगे, उसे व्यर्थ नहीं जाने देंगे, स्थानीय और मौसमी खाद्य पदार्थों को अपनाएंगे तथा प्रकृति और किसानों के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे।

0: रंगी खुशबू के साथ,
1: पवन के ठंडे झोंके के साथ,
0: हिलोरे लेके
1: आकाश की वाणी,
0: आकाशवाणी।
1: विज्ञापन के लिए संपर्क करें आकाशवाणी जगदलपुर आकर,
0: या फोन करें

आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटीनाड सीमेंट का मैक्स ग्रिड सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटीनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।

0: श्रोताओं, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर में। आइए अब आपको ले चलते हैं कविता पाठ के अंत में और सुनते हैं खुदेजा खान की ये कविता।
1: अभी हाल ही में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस गुजरा है और हम सब इस प्रदूषण और कटते जंगल और अपने पर्यावरण से जूझ रहे हैं, तो इसी पर आज मैंने अपनी कविताएं लेकर हाजिर हूँ। शीर्षक है कटता जंगल घटता पर्यावरण। कट रहा था जंगल, अखबार में यह खबर छपी थी विकास के पन्ने पर। मशीनों के शोर में दब गई थी पेड़ों के गिरने की आवाज। उसी शाम एक चिड़िया अपने घोंसले के पते पर लौटी, देर तक आकाश में भटकती रही, ढूंढती रही अपना आशियाना। अगले दिन शहर में सब कुछ सामान्य था। असामान्य था तो इतना कि पृथ्वी थोड़ी कम पृथ्वी रह गई थी। अगली कविता का शीर्षक है जंगल के बिना। जब नहीं होंगे जंगल, यह बात किसी फाइल में नहीं होगी दर्ज, ना दर्ज होगी किसी शिलालेख में। बस धीरे धीरे पेड़ों की जगह कुछ और उग आएगा। सड़कें, इमारतें, कारखाने, विकास के नए नए आकल्पन। सूरज तब भी उगेगा, बाजार सजेंगे, काम पर जाएंगे लोग, किंतु कहीं कुछ तो कम होगा। हवा में नहीं होगी वह जंगली हरी सुगंध। बारिश को कठिनाई होगी अपनी राह तलाशने में। पंछियों के गीतों में कुछ रिक्त स्थान होंगे। जब कोई बच्चा पूछेगा जंगल क्या होता है, हम तस्वीरों की ओर इशारा करेंगे जैसे किसी विलुप्त भाषा की ओर, जहां पेड़ थे, नदियों के स्रोत थे, पशु पक्षी थे, मनुष्य के भीतर बची थी थोड़ी सी विनम्रता। आश्चर्यचकित बच्चा देखेगा सुनेगा एक अविश्वसनीय सी कहानी। जंगल सिर्फ जंगल नहीं थे, वे पृथ्वी के भीतर भविष्य के लिए बचा कर रखी गई सांसें थी। अगली कविता है जंगल के पक्ष में। जब भी पेड़ कटता है तब केवल पेड़ नहीं गिरता, गिरता है एक चिड़िया का साम्राज्य, गिलहरी की दौड़ भाग। प्रकृति से लुप्त होता है हरा रंग। जंगल लकड़ियों का ढेर नहीं होता, पृथ्वी की स्मृति होता है, जहां हवा गीत गाती है, बारिश अपनी धुन बजाती है। विकास बुरा नहीं, इसके साथ होने वाला विनाश चिंताजनक है। जंगल बचाना केवल जानवर बचाना नहीं, केवल वृक्ष बचाना नहीं, यह बचाना धरती का वह हिस्सा जो लाभ हानि की भाषा नहीं जानता। मैं जंगल के पक्ष में हूँ, यहाँ मनुष्य कम जीवन अधिक है। जंगलों का बचना जरूरी है मनुष्य को बचाने के लिए। अगली कविता है धरती ने कहा। धरती ने कहा मत काटो मेरे वृक्षों को, मैं हरियाली के वस्त्रों में लगती हूँ सुंदर। मत बांटो सरहदों में, मेरी नदियां नहीं जानती नक्शों की सीमाएं। मेरे आकाश में मत भरो धुएं की कालिख। पक्षियों को होती है तकलीफ गीत गाने में। अन्न जल वायु और आश्रय देने के बदले मैंने कुछ नहीं मांगा। सूख गई नदियां, जल गए जंगल, मौन हो गए पक्षी, रुक जाएगा सृजन, मर जाएगी रचनात्मकता, बहुत देर हो चुकेगी तब धरती से क्षमा मांगने के लिए। अगली कविता है चेतावनी। पेड़ों की कटती हुई सांसों के बीच बढ़ रहे हैं शहर, पेड़ों की कटती हुई सांसों के बीच बढ़ रहे हैं शहर, विकास का अजगर निकल रहा है, नदियों पहाड़ों खेतों का भविष्य हवा में घुल गया है, प्रगति के नाम पर किए गए असंख्य समझौतों का जहर। नदियां पूछती हैं, कहाँ गए हमारी आरती उतारने वाले, हमें संरक्षित करने वाले, कहाँ से आ रहा है हमारे जल में आशातीत कचरा, पहाड़ों की चुप्पी में झलक रहा है दरकती हुई चट्टानों का दर्द, पिघलते हुए हिमनदों से लगातार बह रहे हैं समय के आंसू, धरती ने नहीं मांगा हमसे कोई प्रतिदान, बस चाहिए थोड़ी सी संवेदना, थोड़ा सा संतुलन, मनुष्यता के प्रति सम्मान। हमने जंगलों को बाजार में बदला, नदियों को परियोजनाओं में, मनुष्य को उपभोक्ता में। मौसम अपने निश्चित व्याकरण से आ गया है बाहर, अनिश्चित है बारिश, असहनीय है गर्मी, कहर बरपाती है शीत, चिंताजनक है ऋतुएं, धरती चेता रही है स्पष्ट भाषा में, मैं तुम्हारी संपत्ति नहीं तुम्हारा घर हूं, मुझे नहीं बचा सके तो अपने लिए भी नहीं बचा सकोगे सुरक्षित ठिकाना। यह चेतावनी कोई वैज्ञानिक रिपोर्ट नहीं, हमारे समय की विनम्रता पूर्ण कविता है, जिसे हर सूखा पेड़, हर प्रदूषित नदी, हर मौसम की व्यथा कह रही है लगातार। अगली कविता है जलवायु परिवर्तन। बदल गया है मौसम का मिजाज, बदल गया है मौसम का मिजाज, सावन में बादल भटकते रहते हैं किसी भूले हुए पते की तरह, जेठ की दोपहरी ऐसे उतरती है धरती पर जैसे आग ने सूरज से कोई संधि कर ली, सिकुड़ती नदियां, पिघलते हिमनद खो रहे हैं समय के बहाव में, समंदर आगे बढ़कर मांग रहा है अपने किनारों का हिसाब, पेड़ काटकर बना दी जाती है सड़क, इनके उद्घाटन में कहीं दर्ज नहीं होता एक जंगल का शोक गीत, धरती हर बार संकेत देती है, कभी बाढ़ बनकर, कभी सूखा बनकर, कभी असमय बरसात तो कभी आंधी बनकर, हम अपने लाभ में व्यस्त, भविष्य की जिम्मेदारी से मुक्त, जलवायु परिवर्तन केवल मौसम का बदलाव नहीं, मनुष्य और प्रकृति के बीच टूटता हुआ विश्वास का पुल है। अगली कविता है सह अस्तित्व। नदी ने कभी नहीं कहा वह बहती है सिर्फ अपने लिए, नदी ने कभी नहीं कहा कि वह बहती है सिर्फ अपने लिए, पेड़ ने कभी नहीं मांगा अपने फल का मूल्य, सदियों से खड़े पहाड़ नहीं जताते कि उन्होंने कितनी नदियों को जन्म दिया, बादलों को दिया आश्रय और हवाओं को दिशाएं, मिट्टी से जुड़े बिना नहीं खिल सकता कोई फूल, हवा पानी धूप कीट पतंगे सब निभाते हैं अपनी भूमिका, तब कहीं होता है सृजन पहाड़ों के धैर्य को सराहा। जिस दिन मनुष्य को लगा वो अलग है, श्रेष्ठ है, स्वतंत्र है, उसी दिन सह अस्तित्व की जगह ले ली स्वामित्व ने। नदी को नदी रहने दे, जंगल को जंगल और पहाड़ को पहाड़। मनुष्य भी ये जान ले, पृथ्वी पर रहना किसी साम्राज्य का शासक होना नहीं, जिम्मेदार होना है एक विशाल परिवार का। प्रकृति और मनुष्य का रिश्ता अटूट प्रेम जैसा है, जहां अधिकार नहीं सहयोग की आवश्यकता है।
0: काव्य सरिता में अभी आपने सुनी खुदेजा खान की कविता। नमस्कार जगदलपुर में आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं कुछ संदेश।
2: विविध भारती के खजाने से हम आपके लिए लाते हैं अनमोल कार्यक्रम।
3: फौजी भाइयों की खिदमत में आपका आदिम नमस्कार आदाब पेश करता है, कबूल फरमाइए।
2: कल और आज के ऐसे ही नामचीन सितारों को आप सुनते हैं विशेष जयमाला में हर शनिवार और रविवार शाम 7:00 बजकर

0: Volume, medium open, short open, FM पर विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक। विविध भारती पर विज्ञापन बुक कराने के लिए हमारा टोल फ्री नंबर है 15102 या लॉग ऑन करें csuaiar.org.in। विविध भारती देश की सुरीली धड़कन।
1: जीएसटी काउंसिल ने अपनी 56वीं बैठक में हेल्थ केयर की चीजों को सस्ता कर देश की बड़ी आबादी को राहत दी है। डायबिटीज कैपिटल कहे जाने वाले भारत के शुगर मरीजों के लिए रोजाना की जरूरत बन चुके ग्लूकोमीटर और स्ट्रिप्स पर जीएसटी की दरों को घटा दिया गया है। नजर के चश्मों को भी सस्ता किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि ब्रेस्ट कैंसर सहित अस्थमा के एडवांस इलाज में काम आने वाली कई दवाओं, थर्मोमीटर और डायग्नोस्टिक किट्स पर भी टैक्स की दर कम की गई है। किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी चित्रकूट की नई पहल। अब हर शनिवार को शाम 7:30 से 8 बजे तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 से 4 बजे तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 07782222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज आपकी कहानी आपके खेतों की जुबानी।
2: श्रोतों, आज है 18 जून और आज का दिन इतिहास के पन्नों पर महज एक तारीख नहीं है, बल्कि ये हमारे देश के सम्मान, वीरता और कभी हार न मानने वाले उस अटूट हौसले का प्रतीक है जिसने ब्रिटिश हुकूमत के नींव हिलाकर रख दी थी। आज झांसी की रानी वीरांगना लक्ष्मीबाई का बलिदान दिवस है। एक ऐसी महान नायिका जिनकी तलवार की चमक आज भी हर हिंदुस्तानी के दिल में देश प्रेम की भावना जगाती है। जब भी उनके अद्भुत साहस की बात होती है, सुभद्रा कुमारी चौहान की वे अमर पंक्तियां अपने आप कानों में गूंज उठती हैं। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी ताने थे, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। मात्र 29 साल की छोटी सी उम्र में जब अंग्रेजों ने उनकी झांसी को धोखे से हड़पने की कोशिश की, तब उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के सामने घुटने टेकने के बजाय अपनी पीठ पर अपने छोटे से बच्चे को बांधा, दोनों हाथों में तलवार थामी और पूरी ताकत से अंग्रेजों का सामना करने के लिए युद्ध के मैदान में कूद पड़ी। उन्होंने अंतिम सांस तक अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए संघर्ष किया। आज ही के दिन 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास युद्ध क्षेत्र में अंग्रेजों से लोहा लेते हुए उन्होंने वीरगति पाई। उनका यह सर्वोच्च बलिदान हमें सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमें अन्याय के सामने कभी नहीं झुकना चाहिए। जब भी हम इस वीरांगना को याद करते हैं तो दिल गर्व से भर जाता है कि इस देश में एक ऐसी माँ ने जन्म लिया था जिसने देश की आजादी के लिए अपने आंचल की ममता और अपने प्राण हंसते हंसते न्यौछावर कर दिए। आइए आंखों में श्रद्धा की नमी और दिल में उनके प्रति अगाध सम्मान लिए इस भावो गीत के साथ इस अमर आत्मा के चरणों में अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।
0: देश से है

David

0: नमस्कार। जगदलपुर में अब समय हो चुका है मधुरी माँ का, पर उससे पहले सुनते हैं कुछ संदेश। इसको बढ़ाने के लिए लीजिए आकाश वाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख। आपका विश्वास लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प। और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग। आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता। बुकिंग है तो संपर्क करें 8700142422 पर, 8700142422।
1: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
2: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
1: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
2: महकता तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
1: आकाशवाणी से।
3: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
0: अब पेश है मधुरिमा। मोहब्बत में इस कदर डूब जाने का नाम है जिंदगी, किसी की बाहों में बिखर कर मर जाने का नाम है जिंदगी। आ जाए वो सामने तो मुकम्मल हो ये जहां, वरना बस एक इंतजार में गुजर जाने का नाम है जिंदगी।

इश्क की राहों में सिर्फ तन्हाई कसाया है, इस दीवाने दिल ने तुम्हें अपनी धड़कन बनाया है। लोग ढूंढते हैं खुदा को मंदिरों और मस्जिदों में, हमने तो तुम्हारे प्यार में ही अपना

चाहत का ये अंदाज भी कितना खूबसूरत होता है, जहां बिना कुछ कहे ही दिल को सब मंजूर होता है। चेहरे पर बेवजह ही एक प्यारी सी मुस्कान ठहर जाती है जब जिंदगी को किसी बेहद खास का साथ नसीब होता है।

नजरों के मिलते ही दिल का साज बजने लगता है, खामोश धड़कनों में भी कोई गीत सजने लगता है। बातें करने की भला किसी जरूरत है अब यहाँ, जब एक इशारा ही रूह में गजल की तरह बहने लगता है।

लाख कोशिश कर लो मुकरने की, मगर ये धड़कन गवाही दे ही देगी। जुबान भले ही साफ पलट जाए, पर ये आंखें सब सच कह देंगी। हर लम्हा बस एक ही चेहरे के ख्याल में खोए रहना, इस छुपे हुए इकरार को सामने ला ही देगी।

दिल के छुपे हुए इकरार और जिंदगी को मुकम्मल करने वाले इन गहरे बाहों के साथ मधुरिमा का सफर यही थमता है। कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर से अब आपकी रेडियो साथी आशा दुलानी को दीजिए अनुमति। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।

0: नमस्कार जगदलपुर। अभी आपने ये कार्यक्रम सुना, आकाशवाणी की गुड मॉर्निंग कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
2: हुआ ये पंखा तो थोड़ा थोड़ा बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहतान।

के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस में विवर्तित शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी फ्रांस की राजधानी में प्रवासी भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम की 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 14 सूत्रीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हराकर श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया।

0: G7 के संपर्क सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने कल G7 देशों भारत और ग्लोबल साउथ की ताकतों को मिलाकर संपर्क और व्यापार को बढ़ाने की रूपरेखा का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों पर पश्चिमी एशिया संकट का दीर्घकालिक असर पड़ेगा। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री ने अमरीका, ब्रिटेन, यूक्रेन, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा, यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर भी बल दिया।
1: मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों शिप दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में शिप की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
0: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। फ्रांस के एव्यू में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने संतुलित आर्थिक विकास, महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला और बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण से जुड़ी तीन महत्वपूर्ण घोषणाएं अपनाई। बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल माहौल संबंधी घोषणा का भारत सहित ब्राजील, मिस्र और दक्षिण अफ्रीका जैसे कई देशों ने समर्थन किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे।
2: 19 जून को

0: शामिल है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज भोपाल।
1: झारखंड से राज्यसभा की दो और मिजोरम से एक सीट के लिए आज मतदान होगा। मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज बात नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयास।
2: नरेंद्र मोदी सरकार के सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2022 में झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। इसी वर्ष फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के तहत झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों को नक्सली प्रभाव से मुक्त कराया गया। ऑपरेशन थंडरस्टॉर्म के तहत झारखंड के सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम और खूंटी जिलों में नक्सलियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया।

0: बड़ा झटका दिया। बस्तर के निवासी ने सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का अपना वादा पूरा किया है।
1: तो उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करके दिखाया। तो मोदी सरकार को, अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
2: यहाँ पर आजकल कोई डर का माहौल नहीं है, कोई भी बच्चे यहाँ पे फ्रीली अपना काम कर पाते हैं।
0: इन अभियानों के परिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए, जबकि 2025 में

गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। विशेष अवसंरचना योजना के तहत स्पेशल फोर्स, राज्य खुफिया शाखाओं और जिला पुलिस को मजबूत बनाने के लिए 1761 करोड़ रूपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 596 सुदृढ़ पुलिस थानों का निर्माण भी किया गया। आज नक्सल मुक्त भारत की कहानी लोकतंत्र, विकास और संविधान की ताकत की जीत का प्रतीक मानी जा रही है, जिसने दशकों से चली आ रही हिंसा पर विजय प्राप्त की है। अक्षित।

0: अभियान को बड़ी सफलता मिली है। 10 लाख रूपए की इनामी महिला माओवादी पुष्पा महतो ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता सीईटीए इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि समझौते से भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी।
1: हमारे पास ऐसे काबिल और महत्वाकांक्षी लोग हैं जो अपने और अपने परिवारों के लिए बेहतर भविष्य की तलाश में हैं। हर साल हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में 14 लाख विद्यार्थी स्नातक डिग्री प्राप्त करते हैं। हमारे पास 140 करोड़ लोगों की ओर से सामान, सेवाओं और डेटा की भी मांग है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजिश्कियान ने पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए शांति समझौते पर डिजिटल हस्ताक्षर किए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अमेरिका ने समझौते का आधिकारिक प्रारूप जारी कर दिया है।
2: 14 सूत्रीय समझौते में लेबनान सहित सभी क्षेत्रों में सैन्य कार्रवाई को तत्काल और स्थायी रूप से रोकने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही दोनों देशों ने 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते पर बातचीत पूरी करने का लक्ष्य तय किया है। समझौते के अंतर्गत अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकेबंदी और उससे जुड़े प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। वहीं ईरान शुरुआती 60 दिनों तक हुर्मुज जलडब्बू मध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित और निःशुल्क आवाजाही सुनिश्चित करेगा। दस्तावेज में ईरान पर लगे प्रतिबंधों में चरणबद्ध ढंग से ढील देने और ईरानी तेल निर्यात के लिए विशेष अमरीकी छूट का भी प्रावधान किया गया है। अमरीका के समर्थन से ईरान ने कम से कम 300 अरब डॉलर के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास कार्यक्रम की योजना भी शामिल है। समझौते में ईरान ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि वह परमाणु हथियार न तो विकसित करेगा और न ही उन्हें हासिल करने का प्रयास करेगा। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रख्यात बौद्ध विद्वान रॉबर्ट ए एफ थर्मन के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। पुरुष क्रिकेट में भारत ने लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजीब बढ़त बना ली है। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मनोज।
3: धन्यवाद फरहत। आज सभी समाचार पत्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर सचित्र प्रकाशित की है। हिंदुस्तान लिखता है, भारत अमेरिका व्यापार समझौते के बहुत समीप, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने दी जानकारी। दैनिक जागरण ने राष्ट्रपति ट्रंप के शब्द प्रकाशित किए हैं, भारत पर हमला हुआ तो हम करेंगे मदद। 16 माह बाद हुई द्विपक्षीय बैठक में अमरीकी राष्ट्रपति ने दिया आश्वासन। फिर टूटी उद्धव की शिवसेना, 9 में से 6 सांसद बागी, शिंदे को मारा अपना नेता। अमर उजाला की सुर्खी है, पत्र लिखता है, लोकसभा स्पीकर को पत्र सौंप कर अलग गुट के रूप में मान्यता देने की मांग की। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्कूलों का हुआ सुरक्षा अंकेक्षण, पॉक्सो कानून के पालन में लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने दिए निर्देश, जनसत्ता की खबर है। दैनिक भास्कर ने फीफा विश्व कप में फुटबॉलर मेसी के इतिहास रचने का समाचार सचित्र दिया है। पत्र लिखता है, हैट्रिक 1, रिकॉर्ड 10, उम्र बढ़ने के साथ मेसी ने खेल की बदली शैली। टेलीग्राम ने प्रतिबंध आदेश को दी चुनौती, केंद्र को नोटिस, देशबंधु सहित सभी अखबारों की सुर्खी है। दैनिक जागरण के शब्द है, टेलीग्राम को लेकर आईआईटी निदेशक से तर्क वितर्क, केंद्र सरकार ने कहा टेलीग्राम पर हो रही हैरान करने वाली गतिविधियां। राजस्थान पत्रिका ने लाहौल स्पीति में सैलानियों की तस्वीर साझा की है। पत्र लिखता है, वादियों में फुर्सत के पल, स्पीति में दिखी बर्फ, सैलानी हुए खुश। लोक सत्ता ने अपने संपादकीय पन्ने पर देश में प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने पर छात्रों के मनोबल टूटने पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, पेपर लीक से टूटता मनोबल, संपादक का कहना है कि पेपर लीक की घटनाएं केवल परीक्षा प्रणाली की कमजोरी नहीं दर्शाती बल्कि ये युवाओं के सपनों पर चोट करती है।
0: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस में द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी फ्रांस की राजधानी में प्रवासी भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के

from the bottom of

मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। प्रातः 8:30 हुए हैं। प्रस्तुत है विभिन्न बोलियों में लोकगीतों का कार्यक्रम लोकमंजरी। शुरुआत करते हैं मोरित सिंह और साथियों के गाए हल्बे गीत।

आइए अब सुने भद्री गीत, गायक स्वर हैं लक्ष्मीराम और साथियों के।

अभी आप सुन रहे थे विभिन्न बोलियों में लोकगीतों का कार्यक्रम लोक मंजरी। ये आकाशवाणी जगदलपुर है। सुबह के 9 बजे हैं। अब प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम पाटाविनार। इसमें आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं आयतुनाग और साथियों के स्वर में ध्रुवी लोकगीत।

विनर में अभी आपने सुने ध्रुवी लोकगीत। गायक कलाकार थे आयतो नाग और साथी। ये आकाशवाणी जगदलपुर है। प्रातः के 9:30 हुए हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे 70 के दशक की एक बेहद लोकप्रिय और युवा ऊर्जा से भरी फिल्म जवानी दीवानी की। ये फिल्म रोमांस, म्यूजिक और मस्ती का एक ऐसा संगम है जिसमें उस दो

फिल्म में जवानी दीवानी के निर्माता थे रमेश बहल और निर्देशन किया था नरेंद्र बेदी ने, जिन्होंने उस समय की युवा सिनेमा को एक नई दिशा दी। फिल्म की सबसे बड़ी खासियत इसकी शानदार जोड़ी और कलाकार है। फिल्म में मुख्य भूमिका में नजर आते हैं रणबीर कपूर, जिनके साथ रोमांटिक अंदाज में दिखाई देती हैं जया भादुड़ी।

जवानी दीवानी की सफलता में उसके संगीत का योगदान फिल्म की लोकप्रियता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा गया। महान संगीतकार आर डी बर्मन ने ऐसी धुनें रची जो आज भी सुनने वालों को बरबस अपनी ओर खींच लेती हैं। वहीं गीतकार आनंद बख्शी ने शब्दों में वो जादू भरा जिसने हर गीत को दिल की आवाज बना दिया। इन गीतों को किशोर कुमार और आशम भोसले की आवाज का साथ मिला।

चाहने और निरुपण राय साथ ही एके हंगन भी नजर आए। फिल्म की कहानी कॉलेज जाने वाले दो युवाओं रणधीर कपूर और जया भादुड़ी के इर्द गिर्द घूमती है, जिनका प्यार उनके माता पिता के सामने आता है और फिर शुरू होता है चुनौतियों का दौर। फिल्म में युवाओं के जोश और उनके प्रेम की एक झलक भी दिखाई गई है।

से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और आज की फिल्म है जवानी दीवानी। ये फिल्म आज भी हिंदी सिनेमा के उस सुनहरे दौर की याद दिलाती है जहां संगीत, रोमांस और युवा भावनाएं एक साथ सांस लेती हैं। ये फिल्म समय के

0: एक ही फिल्म से इस कार्यक्रम में अभी आपने सुने सन 1971 में प्रदर्शित फिल्म जवानी दीवानी के कुछ गीत। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। प्रातः के 9:55 होने को है। प्रादेशिक समाचार अब हम आप
1: रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। पेश है आज के मुख्य समाचार। एक दिवसीय प्रवास पर रायपुर पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। मुख्यमंत्री ने

समाचार विस्तार से। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज सुबह एक दिवसीय प्रवास पर रायपुर पहुंचे। अपने दौरे के दौरान वे बलबीर जुनेजा इंडोर स्टेडियम में आचार्य पदारोहण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके बाद शाम करीब 4 बजे शांतिनगर में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। श्री बिरला आज शाम दिल्ली लौट जाएंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल गरियाबंद जिले को 603,46,00,000 रूपये से अधिक के विकास कार्यो की सौगात दी। पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 76 विकास कार्यों का लोकार्पण, भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इनमें सड़क, सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल और विद्युत से जुड़े कार्य शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। उन्होंने गरियाबंद के सर्वांगीण विकास के लिए आधारभूत सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया। पीएम सेतु योजना के तहत प्रदेश के शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों आईटीआई को आधुनिक और उद्योग अनुकूल बनाया जा रहा है। योजना के तहत छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और ड्रोन जैसी नई तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही पुरानी मशीनों के स्थान पर आधुनिक उपकरण, डिजिटल कंटेंट और स्मार्ट क्लासरूम की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में मंत्रालय में आयोजित राज्य स्तरीय स्टीयरिंग समिति की बैठक में पीएम सेतु योजना की प्रगति की समीक्षा की गई।

जिले में बीज गोला बनाबो जशपुर के जंगल्ला बढ़ाबो महाअभियान के तहत भैरव पहाड़, सोगड़ा, नुमान टेकरी सहित विभिन्न चिन्हांकित स्थलों पर लगभग 2 लाख सीड बॉल तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। जिला प्रशासन और वन विभाग की टीम ने सभी नागरिकों

संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है। मंडल

मीडियम वेव 396.8 मीटर अर्थात 756 किलो हर्ट्ज, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय प्रातः के 10 बजे हैं। लीजिए आप सुनिए कार्यक्रम गुलशन। इसमें आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं शास्त्रीय रागों पर आधारित फिल्मी गीत। पहला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म गोलमाल से, स्वर किशोर कुमार के। गीत लिखा है गुलजार ने और इसे संगीत से संवारा है आरडी बर्मन ने, और ये गीत राग कीरवानी पर निबद्ध है।

पेश है साहिर लुधियानवी की रचना, संगीत खयाम का है। फिल्म में कभी कभी के इस गीत को अपनी आवाज दी है मुकेश ने। ये गीत राग भूपाली पर आधारित है।

आरडी बर्मन के संगीत निर्देशन में आईएसओ ने आनंद बख्शी का लिखा, किशोर कुमार का गाया फिल्म महबूबा का गीत। ये गीत राग शिवरंजनी पर निबद्ध है।

आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुलशन, और इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं शास्त्रीय रागों पर आधारित फिल्मी गीत। किशोर कुमार की आवाज में लीजिए पेश है फिल्म कटी पतंग का गीत। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार हैं आर डी बर्मन। ये गीत राग बिलावल पर आधारित है।

Tournette.

0: ग्रामीण क्षेत्र में अगर हम बात करें तो ग्रामीण जो महिलाएं हैं बहुत काम करती हैं, बहुत मेहनत का काम करती हैं, मतलब उन्हें झुकना भी ज्यादा पड़ता है।
1: जी, जो आंकड़े हैं

0: कारणों में एक कारण मोटापा भी है
1: जी
0: और उस पर विशेष रूप से ध्यान
1: जी
0: देना

Abi,

बात रोगों की जो प्रमुख दवा है वो ग्लू है, जो कई प्रकार के फेफड़ों को

0: इस तरह के घरेलू उपायों से बचा जा सकता है।
1: जी
0: सबसे बड़ी जो दिक्कत है इस रोग के बारे में, भारत में मैं आपको बताना चाहूंगा, करीब 10 करोड़ व्यक्ति गठिया रोग से पीड़ित हैं। और उसका कारण ये है कि कहीं ना कहीं जो रोगी हैं उनके द्वारा इस रोग की अनदेखी की जाती है।

0: तो जोड़ को पूरी तरह क्षति हो जाती है, क्षति पहुंचती है, और ऐसी स्थिति में जो एक उपचार रहता है वो बदल नहीं का, प्रत्यारोपण का ही रह जाता है। तो उस स्थिति में न पहुंचे उससे पहले यदि आप इन सारे घरेलू उपायों का उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से इस रोग से बचाव बचा जा सकता है। तो डॉक्टर राकेश भार्गव साहब, आज आपने गठिया रोग कारण लक्षण और उसका किस तरह से हम निवारण कर सकते हैं इस बारे में आपने विस्तार से हमारे श्रोताओं को बताया, तो इन सभी जानकारियों के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: सुमारी ये तो रिली भेट वार्ता ने ये भेट वार्ता भी तेरे राकेश बिहारी भार्गव और ये संकोट बात करते रहो नारायण सिंह बघेल ने जाते ये चीज संज्ञा हम जात तो समय बोले वैसे अली मैं मोटा के सकले से तो ये भी दमा
2: तो जा तो पूरी ये बस्तर सोर कार्यक्रम सुन तो सब पाए दादा दीदी सियान सगन संग गोरिया संगवारी मन के मैं सुमारी
1: और मैं अरुमा
2: हमें दोनों करू से
1: राम
2: राम।
1: राम।
3: आप सुन रहे थे कार्यक्रम बस्तर के सर, ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। संध्या के 7:21 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित

0: जोहार तुम्हारी जोहार।
1: जुहार अरमान जुहार
0: अरे तो मैं तो जोहार बैठो लू ने
1: ओके
0: अले हम चो किसान दादा मन संग बोले बैठ गठ हो ने
1: ओके
0: इसी संगे किसान वाणी कार्यक्रम सुन तो सफाई की तिहार दादा दीदी मन की मैं अड़मा
1: मैं सुमारी
0: हमी दुन करूं से
1: जुहार।
0: जोहार।
1: तो अरमा
0: हाँ
1: आजकल दत
0: सुमारी
1: सिप समय समय ने कसन पानी मन कसरे से बे
0: आओ।
1: का तो बिन बदरी चो पानी कसरे मुरियानी से ने
0: आओ।
1: आर का बस जाले आमी पानी तो गसरी से कसरे से ने आमी पानी चो का बस जाले का तो रुकनी सकूं ने मां रुकनी।
0: सुमारे
1: हाँ
0: आमी तो बस्तरिया लो गांव ने इता ज्यादातर किसान मनास और खेती बाड़ी चो बुता ज्यादातर करवात ने तो यही हिसाब ने देखिए चौमास हमरे से ने तो चौमास बेरा आम चो जोन बरसा पानी होए से उन पानी के किंडे के कौन तो लगे तरी बनाऊं कौन तो लगे काय डबरी और सब बनाऊं बाती रुंडाऊं बाती संग और लेने काय है कि जेठ बेरा जोन फसल धरुं दे उन फसल के पानी दे तो काज काम है इतने तो दादा दीदी मन कोने लग बोले तुम्ही उसने वार बनावा और ये जो न बरसा पानी पोखट ने जाए थे बटून बह बहे थे ने उनके जमा कर तू वार बनावा।
1: अरे का है मैं तो अगर सत्य बोली शर्मा लेकिन का है हम चलो लोग मन जो पानी तो हम चलो को भी पानी आसे लेकिन हम उनके अच्छा बाहर रुकने जानू तो बड़ा कहीं दो तुम पत्र बुल करूं से पानी के एकदम बल बला पखम से नहाले उन्हें पानी के बचा उनके काय तो करूं करी ले रुनान करी ले नहाले उन्हें पानी के कहीं फूल बुटा नहाले रुक रही ने एक नार साल बाजी ने रिखा लो ना देने ते भी कहीं पानी आम के आम पानी के बचा बोल सकूं दे आज का कहाँ कहाँ असन आसे गाँव मन अरमा जहाँ पानी थी बोले कुबे काय तो आसे ए नीली रे पानी बलो ने पानी का जे कुबे तरपुन जाए सो ना काय तो करुन जाए सो ने
0: तो देख उन मन तो पानी नी मेरे गुने एकदम कसना बाइबल फलो रहे सर ने
1: ओके
0: जहाँ पानी मेरे से उन लोग मन की कहते का इच्छी पर ज्यादा नहीं पड़े से
1: नहीं
0: मान कर
1: पड़े
0: देख उन चो आमी महत्व नहीं समझो से ने
1: ओके
0: कौन तो लगा आमी बरस करते रहूं सर बट पानी अपनी नल के चाणू
1: नल के
0: देऊं
1: छानो देऊ से नहाले बोर्ड के
0: से
1: छानो देऊ से ने
0: तो ये सब चीज के ध्यान देव पड़े थे आम चीज जो पानी आए आजकल और ज्यादा सूखते जा सो तो गर्मी बेरा जो नाला सो जहाँ पानी गिरते रहे ने उसमें लगभग झटके झटके सूख जाए से कई हो तालाब हो नाले पर चुहा हो ने
1: ओ ये भी काय आमी असनीन बले आमी काय आम चो रुक राई के बले गोंदते जाऊं से रुक राई गोंद ले आम चो बद्री नहीं बने बद्री नहीं बन लन काय पानी बरसा नहीं होए मानसून
0: आओ
1: नहीं हमारे ने
0: दखनु ई सुकसन ओलिस ने
1: हो
0: नाली दलदा है आम चो बस्तर ने तो खूबी पानी बरसा ये तेरु हुआ है मान
1: हो
0: तारा आजी खूबी दिन होली से मतलब
1: हो
0: 18 तारीख मर से फिर बोले आम चो बस्तर ने पानी चो काई आना पता नहीं आया था।
1: ओ पिला बेरा सुनते हूँ से नहाले 15 जून ले पानी वाय बोलते ने मानसून वाय बोलते उन मानसून के बोला अदाय दखते हूँ से कि उन मानसून बोले मानसून तो बोल सोत लेकिन समय ने उन पानी बोले नहीं है काहे कि हम जो एक रुक रही के काट रुक रही के गोनते जाऊं से और बूठा उगरावल नी मंडाऊं
0: तो ये सब पाए चु कारण है जो ना आम चु पानी किंड काम के
1: नो
0: कम मेरे से और जट के आटते जाए इसने।
1: ओ उन्हीं का जे आम के रुक रही मंडा तो रहा है और काय बस जाले पानी के बले बचा तो रहा है पानी ऐसे बलते कपत नहीं कर तो रहा है।
0: आओ दक सुमारी
1: हाँ
0: ये गोट के तो हम ही आमचो दादा दीदी लगे हम रालू ने
1: ओके
0: आली आमचो लगी और जहला असन गोट मन बोला रोजे आनंद रू आम ने
1: ओके
0: तो आली ये जहला गोट मन के बोला हम राउन तेबे।
1: आले
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
4: जीएसटी काउंसिल ने बीमा पर लगने वाले 18% टैक्स को घटाकर जीरो कर दिया है। ऐसे में जीवन बीमा लेने वालों को अब सिर्फ इंश्योरेंस का प्रीमियम ही भरना होगा और इस पर कोई भी अतिरिक्त टैक्स नहीं देना होगा। ये हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों के लिए बड़ा फायदा है क्योंकि LIC को पहले से ही इनकम टैक्स में छूट मिली हुई है। वहीं अब GST भी हटने से बीमा लेना फायदे का सौदा होगा।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
5: GST काउंसिल बुधवार नेटेन घोषणा कित्ता की सरकार सीमेंट तपोर्रो GST मोला 28% तुन कम कीस, इंजे 18% कीस इत्ता। टैक्स तगा कमी कित्ता, आवासीय आड़ व्यवसायिक प्रोजेक्ट तगा लागत दबाव कम आयना दुमीद मिंदे। इलेकेन संगमरमर इंदनाद और ट्रेवकिन ट्रेवटीन ब्लॉक इतके ओंडले कटा बंडकल तगवेन टैक्स दर 12% से गटे मास 5% कीस इत्तोड़। ग्रेनाइट ब्लॉक तगवेन मुन्ने 12% मत्ता आदिंजे 5% GST लगे माता। इदेन संगेन उसका चुन्नाम ताव ईटा और बंडाकल तीन जोड़ाई की अनबूताते वेन मोला 12% से कम मास 5% की सित्तोड़।
0: तो सुमारे
1: आले
0: ये जहला गोट मन के तो अमरालू ने
1: हो का
0: आले आजी आम चु मोडरा ने खाया से आले मोडरा की निगरान दकू
1: आले मचले काय बोलसे तो मोडरा ने आसे वेड वार्ता आरे वेड वार्ता है कार्बनिक खेती
0: आले कार्बनिक खेती काय हो आए जाले ये मन डॉक्टर संदीप कुमार मन नाम की सांग देने
1: संग बैठ कर सो चंद्र सिंह ठाकुर
0: आले ये बर्ट वार्ता के बोले आम चु किसान दादा दीदी मन लगे अमराऊ ने
1: आले ते
6: किसान वाणी सुन रहे आप सभी किसान भाई बहनों को चंद्र ऋषि ठाकुर का नमस्कार। भाई बहनों, आज हम किसान वाणी में भेंट वार्ता के अंतर्गत जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो विषय है कार्बनिक खेती। आप में से कईयों के लिए ये शब्द नया होगा और आप लोग ये जानना चाह रहे होंगे कि आखिर कार्बनिक खेती होती क्या है। तो आज हमने इस विषय पर जानकारी देने के लिए अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है संदीप कुमार जी को। आप परिक्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र जगदलपुर में शस्य विज्ञान के अतिथि वैज्ञानिक हैं। तो सबसे पहले स्वागत है संदीप जी आपका हमारे स्टूडियो में।
7: धन्यवाद।
6: तो जैसा कि हमने अपने श्रोताओं को पहले ही बता दिया है कि आज हम कार्बनिक खेती के बारे में बात करने वाले हैं। कार्बनिक खेती हम में से बहुतों के लिए एक नया शब्द है, तो सबसे पहले तो आप यही बता दीजिए कि आखिर ये कार्बनिक खेती क्या है।
7: कार्बनिक खेती की अगर मैं बात करूं तो कार्बनिक खेती हमारे भारतवर्ष के लिए कोई नई विषय नहीं है। कार्बनिक खेती पूरे विश्व में अगर इसका जनक माना जाए तो भारत ही है। इसका मतलब है कि कार्बनिक खेती में हमारे पास जो चीजें हैं, जैसे गाय से गोबर प्राप्त कर रहे हैं हम लोग, और कई पशु हैं हमारे पास, पेड़ हैं, इनके जो अपशिष्ट हैं इनसे हम खाद बनाएं और उनका उपयोग करें, और जो रासायनिक तत्व हैं उनका उपयोग हम अपने खेत में ना करें, और उससे जो उपज होगी वो हम मानते हैं वो कार्बनिक खेती से प्राप्त की गई उपज है। तो किसान भाइयों और श्रोताओं, कार्बनिक खेती का मतलब है हम लोग अपने खेत में रसायनों का उपयोग किए बिना जो उत्पाद उत्पन्न करते हैं वो कार्बनिक उत्पाद है, और उस प्रकार की खेती को हम कार्बनिक खेती कहते हैं।
6: एक और शब्द हम सुनते हैं, ऑर्गेनिक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग और कार्बनिक खेती, इन दोनों में क्या अंतर है?
7: नहीं, दोनों बिल्कुल एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग की जब हम बात करते हैं तो वो इंग्लिश में हम लोग जाते हैं, और हिंदी में अगर हम बात करें तो ये जो है हमारी मातृभाषा में वो कार्बनिक खेती है।
6: जैविक खेती भी
7: जी बिल्कुल।
6: तो जैविक खेती वैसे क्यों करना चाहिए हमारे किसान भाई बहन?
7: जैविक खेती करने का उद्देश्य है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हमारा देश आजाद हुआ नहीं था, ब्रिटिश इंडिया था, तब से हमारे यहाँ जो अंग्रेजों ने जितनी भी प्रकार की खेती करवाई, और उसके बाद ऐसा एक स्थिति आया कि हमारे यहाँ भूखमरी उत्पन्न होने लगी। तब 1960 के दशक में 1965-66 में हरित क्रांति का जो है प्रादुर्भाव हुआ, और हरित क्रांति में हमारे किसान भाइयों ने, बाहर के लोगों ने, जितने भी लोगों ने खेती की उसमें अंधाधुंध रासायनिक उर्वरकों का हम लोगों ने उपयोग किया। इससे एक चीज हुआ, उस समय तो उत्पादन लगातार बढ़ी, तो हम लोगों के लिए एक नया चीज था कि हम लोगों का ये कार्बनिक खेती में जो हम लोग रसायन डाल रहे हैं हमारी खेत में, तो उत्पादन लगातार बढ़ रहा है, बहुत मात्रा में बढ़ रहा है, दुगुना तिगुना आ रहा है। लेकिन एक समय के बाद, शोध के बाद, हम लोगों ने यह निष्कर्ष निकाला कि जितना भी हम अब कार्बनिक खेती में रसायनों का उपयोग कर रहे हैं, उसके बाद हमारा जो खेत है उसमें से उत्पादन बढ़ नहीं रहा है,
6: उपजाऊपन जो है वो खत्म हो जा रहा है,
7: वो खत्म हो जा रहा है, उत्पादन सस्टेन हो गया है, और हो सक रहा है कि हमारे खेत की जो स्थिति है वो भी खराब होती जा रही है, साथ ही साथ पर्यावरण पे भी नुकसान हो रहा है। और दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं करूं, जो उत्पाद हम खा रहे हैं उससे मानव जो है, पूरे सकल विश्व के मानव को कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उसमें से ऐसी परेशानियां हैं जैसे कैंसर जैसे रोग हैं। आज मैं आपको बता दूं, पंजाब में और हरियाणा में स्थिति ऐसी आ चुकी है कि जिस प्रकार से हम लोगों ने रसायनों का उपयोग किया है, हर्बिसाइड्स का उपयोग किया है, शाकनाशियों का उपयोग किया है, कीटनाशक का उपयोग किया है, उसमें से हर 5 में से 2 आदमी को कैंसर है। तो आप ये देख सकते हैं स्थिति क्या है। जब हम ग्राउंड वाटर की बात करते हैं, भूमि में जो जल है, जो हम ट्यूबवेल से जो पानी निकाल रहे हैं, उसमें भी उस रसायनों के ट्रेसेस मिल रहे हैं, उसमें भी उस रसायनों के तत्व जो है वो मिल रहे हैं, और जो हमारे लिए कैंसर आसानी से उत्पन्न कर सकते हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए, भविष्य की परेशानियों को देखते हुए, संकट को देखते हुए, मृदा की स्वास्थ्य को देखते हुए, और भविष्य में जो आने वाली पीढ़ी है उनको संरक्षित करने के लिए, उनके लिए हम एक बेहतर स्वास्थ्य उपलब्ध कराने के लिए, बिल्कुल जरूरी है कि हमारे पास एकमात्र विकल्प है कि हम कार्बनिक खेती की ओर जाएं।
6: लेकिन जो किसान है वो तो काफी दिनों से ये रासायनिक खादों का, कीटनाशकों का उपयोग करते आ रहे हैं और अभी भी अपने खेतों में करते हैं, तो उसके क्या क्या विकल्प जैविक खेती में या कहे कार्बनिक खेती में उपलब्ध हैं, ताकि हमारे जो किसान भाई बहन आपको सुन रहे हैं वो उन तत्वों का इस्तेमाल कर सके।
7: तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कार्बनिक खेती रासायनिक खेती से बहुत सस्ती और अच्छी विकल्प है। सबसे पहले हमारे पास आसानी से जितने भी हम लोग फसल उत्पादन करते हैं उनके जो अवशेष हैं वो बचते हैं, साथ ही साथ भारत कृषि प्रधान देश रहा है, और साथ ही साथ भारत में जो पूरे विश्व की अगर बात करें तो गौवंश भी बहुत ज्यादा मात्रा में है, तो उनसे जो गोबर प्राप्त होता है, मुर्गियों से जो बीट प्राप्त होती है, और जो बकरी हैं, भेड़ हैं, इनसे जो मलमूत्र प्राप्त होते हैं, इनसे हम बेहतर कार्बनिक खाद बना सकते हैं। दूसरी बात, केचुआ खाद, आप लोगों ने सबने सुना होगा केचुआ खाद क्या है। तो किसान भाइयों, जब हम खाद बनाने के लिए केचुआ का उपयोग करते हैं तो उस प्रकार के खाद को हम केचुआ खाद कहते हैं, और इस प्रकार के केचुआ खाद में, आपको मैं बता दूं, रसायनों की तुलना में, रसायनों में जैसे हम बात करते हैं यूरिया की, तो यूरिया में केवल और केवल नाइट्रोजन पाई जाती है, डीएपी में केवल और केवल नाइट्रोजन और फास्फोरस पाया जाता है, उसी प्रकार म्यूरेट ऑफ पोटास, जिसको आप लोग मिरी खाद के नाम से जानते हैं, उसमें जो है पोटास की मात्रा पाई जाती है। लेकिन गोबर की खाद और हमारी जो केचुआ की खाद है, इसमें 18 प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, और ऐसे पोषक तत्व जो कि उपस्थित रूप में होते हैं, जिसको पौधा आसानी से ले सकता है। इस प्रकार के खादों का उपयोग करने से जितने भी सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, मुख्य पोषक तत्व हैं और द्वितीयक पोषक तत्व हैं, वो पौधों को आसानी से मिल जाते हैं, संतुलित रूप से मिल जाते हैं, जिससे पौधा बेहतर वृद्धि और विकास करता है और अच्छे उत्पादन, गुणवत्ता युक्त उत्पादन हमें मिलती है।
6: ये तो खाद के विकल्प हो गए, अगर कीटनाशकों की बात करें।
7: जी बिल्कुल, कीटनाशकों की बात करें तो मैं आपको बता दूं, कार्बनिक खेती में सबसे पहले मैं बात करता हूं नीमास्त्र की। नीमास्त्र, किसान भाइयों, नीम की बीज है, नीम की पत्तियां हैं, इनसे हम तैयार करते हैं, इनको उबाल के, इनको गाढ़ा करके, जैसे हम बात करते हैं, जैसे आपके पास 5 लीटर पानी है तो आप 5 किलो नीम की पत्तियां ले लीजिएगा और उसको उबालिए जब तक कि वो आधी न हो जाए, और उसको छान के आप रख लीजिए। इसका बिल्कुल आप उपयोग कर सकते हैं सभी प्रकार की कीड़े के लिए।

0: और दूसरी बात मैं बात करूं, हमारे पास अगर बीमारियों के लिए भी हमारे पास कई प्रकार के फफूंद फफूंदी हैं जिसका हम लोग उपयोग करते हैं। नाइट्रोजन के लिए जैसे हम लोग बात करते हैं राइजोबियम की बात करते हैं, एजोस्पाइरिलम की बात करते हैं, फास्फोरस के लिए पीएसबी बैक्टीरिया की बात करते हैं, जिंक के लिए हम लोग बात करते हैं जेएसबी की बात करते हैं। और आपको बनाना है तो जीवामृत बनाइए आप। जीवामृत में क्या करना है, आपको 200 लीटर का एक ड्रम ले लीजिएगा और उसमें आप 10 किलो गोबर, 2 किलो गुड़, अगर 2 किलो नहीं है तो आप 1 किलो डालिए, 1 किलो बेसन डालिए, उसके बाद आप गौमूत्र डालिए 10 लीटर, और उसके बाद उसमें आप पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे की जो मिट्टी है 1 किलो बढ़िया से छान की मिट्टी डाल दीजिएगा, और उसको एक सप्ताह तक, हर दिन आपको उसको घुमाना है डंडे से, एक सप्ताह तक छांव में रखिएगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा, और इसको बिल्कुल आप जो सिंचाई का जल है उसके साथ आप यूज कर सकते हैं। अगर आप इसको और पतला मात्रा में देंगे तो ड्रिप में भी ये आसानी से जा सकता है
1: जी। तो जैसे हम ज्यादातर देखते हैं इधर छत्तीसगढ़ में धान की खेती बहुत ज्यादा होती है, और धान में ज्यादातर जो किसान है वो पोटाश और यूरिया का उपयोग ज्यादा करते हैं, तो क्या यूरिया और पोटाश भी इंसानों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है?
0: नहीं जी, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा, यूरिया और पोटाश को पौधा नहीं लेता, पौधा लेता है नाइट्रोजन को, और जो पोटाश जो हम लोग बोल रहे हैं वो पोटेशियम को जो है वो नेचुरल में जो है उसका एलिमेंटल रूप जो होता है उसमें लेता है। तो वो पोषक तत्व तो हमें भी चाहिए, लेकिन क्या वो पोषक तत्व तो हम किस रूप में दे रहे हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो उस पोषक तत्व को अगर हम कार्बनिक रूप से देते हैं तो मृदा स्वास्थ्य, जो मृदा की स्वास्थ्य है, क्योंकि जब तक स्वस्थ मृदा नहीं होगी, हमारा एक कॉन्सेप्ट है, एक प्रिंसिपल है, हमारा सिद्धांत है कि मिट्टी को खिलाइए पौधों को नहीं। जब तक हम मृदा को नहीं खिलाएंगे तब तक मृदा स्वास्थ्य अच्छी नहीं होगी, और जब तक मृदा स्वास्थ्य अच्छी नहीं होगी उससे जो भी पदार्थ आएगा वो स्वस्थ नहीं होगा। तो हमारा मेन मकसद है कि जो आप बात कर रहे हैं रासायनिक जो चीजें हैं उसमें केवल और केवल आपका नाइट्रोजन और फास्फोरस नहीं होता, उसके अलावा भी विषाक्त तत्व होते हैं जो मिट्टी में हानिकारक प्रभाव डालते हैं, और उसी प्रभाव को हमें कम करना है
1: जी। तो क्योंकि किसान भाई बहन काफी सालों से इसी प्रकार की खेती कर रहे हैं तो उस चीज को उन्होंने अपना लिया है, रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग करना, रासायनिक खादों का उपयोग करना, तो इस चीज में सरकार की दखल अंदाजी जब तक ना हो तब तक शायद ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, संभव नहीं हो पाएगा कि पूरी तरह से कार्बनिक खेती या जैविक खेती को अपनाया जाए।
0: जी बिल्कुल।
1: तो क्या सरकार ऐसी कुछ योजनाएं ला रही है या फिर कुछ ऐसे कदम उठाई है जिससे जैविक खेती को बढ़ावा मिल सके?
0: जी बिल्कुल। भारत में अगर मैं बात करूं, एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 तक लगभग 60 लाख हेक्टेयर जो क्षेत्रफल है वो कार्बनिक खेती के अंतर्गत है, और साथ ही साथ भारत सरकार ने कई प्रकार की योजनाएं किसानों के हित में कार्बनिक खेती के बढ़ावा करने के लिए सरकार ने लागू की है। उनमें से मुख्य योजनाएं हैं परंपरागत कृषि विकास योजना। इस योजना में किसानों को 3 साल तक के लिए सरकार 31,000 रुपये पर हेक्टेयर प्रदान करती है, और साथ ही साथ जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है जिसमें हमारा भी क्षेत्र आता है, छत्तीसगढ़ भी आता है, बस्तर भी आता है, उड़ीसा भी आता है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट एक योजना है वो सरकार ने चालू की है। भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति सरकार ने चालू की है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की मैं अगर बात करूं तो छत्तीसगढ़ के सरकार ने छत्तीसगढ़ के 5 जिलों को कार्बनिक जिला भी घोषित किया है, जिसमें से ये जिले हैं सुकमा, गरियाबंद, दंतेवाड़ा, बीजापुर और नारायणपुर। इन जिलों में सरकार की जो योजनाएं हैं और किसानों के लिए जो मंशा है सरकार की वो ये है कि पूर्ण रूप से किसान जो है कार्बनिक खेती की ओर जाए, और जिस भूमि में हमारे जो उत्पाद हैं वो अच्छी गुणवत्ता वाली आए, और किसानों को सरकार के द्वारा जो है सर्टिफिकेशन भी किया जाता है 3 साल के बाद, जो है कई एजेंसी हैं उसके लिए, तो उससे क्या होता है उनका जो उत्पाद है वो अलग से जो है ऑर्गेनिक उत्पाद के रूप से भी बिकता है
1: जी। जैसे हम शहर में रहते हैं और शहरों में ज्यादातर हमारे पास जमीन नहीं रहती कि हम अपनी खुद की सब्जी भाजी ऐसी लगा सकें, और ज्यादातर जो बाजार में आती हैं सब्जियां आती हैं उनमें किसी ना किसी प्रकार से रसायनों का उपयोग तो हुआ ही रहता है, तो क्या ऐसे कोई आप हमारे श्रोताओं को टिप्स बता सकते हैं जिससे हम जब भी सब्जियों का उपयोग अपने खाने के लिए करें तो उन रसायनों को निकाला जा सके सब्जी से, या फिर कैसे पहचान किया जा सकता है, आप जरा बताएं।
0: तो सबसे पहले मैं किसान भाइयों से आग्रह करता हूं और जितने भी हमारे श्रोता हैं जो शहर क्षेत्र में रहते हैं उनके लिए मैं बढ़िया सा एक तकनीक बता रहा हूं, वो अपने घर के छत में भी उसको कर सकते हैं। वर्टिकल गार्डन आप लोगों ने सुना होगा, वर्टिकल गार्डन में क्या होता है, आप बांस या किसी लोहे का एक फ्रेम बनवा लीजिएगा, उसमें हुक लगा लीजिएगा, उसमें गमले रखने के लिए स्टैंड होते हैं, वो गमले रखिए, छोटे छोटे ट्रे भी आ जाते हैं, उसमें आप क्या करिएगा, वर्मी कंपोस्ट, है ना, वर्मी कंपोस्ट, कोकोपीट का जो अपना नारियल का बुरादा होता है वो, और गोबर की खाद, तीनों को बढ़िया से एक समान 30-30% करके और 10% मिट्टी वो डाल के आप तैयार कर लीजिए, और उसमें किसी भी प्रकार की जो हमारी हरी पत्तीदार वाली सब्जियां हैं वो आप उगा सकते हैं। और एक मेरा और एक शर्त है कि सब्जियों को आप उखाड़े मत, उसको तोड़िए। दूसरी बात क्या है कि जैसा कैसे पहचान करना है मार्केट में, तो मैं आपको बता दूं, आजकल जितनी भी प्रकार की सब्जियां आ रही हैं और जो फ्रेश दिखती है मार्केट में, वो पूर्ण रूप से जो है केमिकल से, रसायन से वो उपचारित है। तो किसान भाई, जब भी आप उत्पाद खरीदें, थोड़ी सी हल्की डल, जो ज्यादा फ्रेश नहीं दिखती, हल्की मुरझाई हुई दिखती है, जिसमें थोड़े बहुत कीड़ों का प्रकोप दिखता है, पत्तियां जो है कटी छटी दिखती है, इस प्रकार के उत्पादों का चयन करें। और दूसरी बात, आप जो ज्यादा चमकदार है उस पर ना जाइए, क्योंकि उसमें अंधाधुंध रूप से हम लोग जो जितने भी उत्पादक हैं कमर्शियल रूप से जो उत्पादन करते हैं वो हार्मोन्स डालते हैं, जो कि हमारे लिए और मृदा स्वास्थ्य के लिए भी उतना स्वास्थ्यवर्धक नहीं है, क्योंकि वो जबरदस्ती किया गया है, नेचुरल रूप से नहीं है। तो उसमें क्या करना है आपको, अगर आप खरीद भी लिए हैं तो उसको हल्का सा गर्म पानी में आप उबालिए, वॉश करिए, आप देखेंगे कि आप धीरे से उसको उठाएंगे तो उसमें एक मोटी सी परत दिखेगी आपको, वो इंसेक्टिसाइड फंजीसाइड की परत है, जो हमारे लिए धीरे धीरे जब हम कंजप्शन करते हैं तो हमारे पूरे स्वास्थ्य को जो है वो नुकसान कर सकती है, जिसके कारण क्या होता है कि हमारे शरीर में कई प्रकार की बीमारियां होती है, और उसके बाद खून में जो है ब्लड में जो है थक्का जमने की भी समस्याएं होती है, और हार्ट अटैक की संभावनाएं जो है वो बढ़ती है। दूसरी बात, कार्सिनोजेनिक इतने कंपाउंड्स हैं जिससे कैंसर जो है, कोशिकाओं का अनियमित रूप से वृद्धि होना शरीर पे और कैंसर का उत्पन्न होना, ये स्वाभाविक है। अगर इस प्रकार से चीजों के लिए आपको बचना है तो कार्बनिक चीजों का आपको चयन करना है, जो हल्की मुरझाई हुई है, जो हल्की डलनेस है, जिसमें ज्यादा साइन नहीं है, इस प्रकार के सब्जियों का, भाजी का आपको चुनाव करना है।
1: जी, तो संदीप जी, आपने तो बहुत अच्छी जानकारी दी कार्बनिक, क्या कहें, जैविक खेती के बारे में, और उम्मीद है कि जो श्रोता आपको सुने हैं उन्हें भी थोड़ी सी जानकारी मिली होगी, और वो कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा अपने स्वास्थ्य को सुधारने के लिए जैविक पदार्थों का उपयोग करें। तो आपने अपना समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।
0: जी, धन्यवाद।
2: सुमारी,
3: हाँ,
2: ये तो खाए मजा भेट वार्ता रहे ने।
3: हो खाए।
2: कार्बनिक खेती के बारे में आम चुलगे जानकारी देते रहो तो डॉक्टर संदीप कुमार।
3: हो।
2: और ये मनसंगी गोट बात करते रहो चंद्र ऋषि ठाकुर।
3: हाँ।
2: दखा खेती हर दादा दीदी मन ने तो मन मन बोले असनी जैविक खेती करा, और आप लोग जो खेती किसानी करते बुता के आगे बढ़ावा ने।
3: Okay. और काय बोलसी जाले, आम्ही उनी गायचो मुतलो उतलो गोमूत्र बोलून जोन सांगते रहे एबे। उन गोमूत्र बोले असनी काय को पकाऊ दे उसे ने, उनके आम्ही सीधा उन टंकी नहाल उन खोदरा उदरा ने काय तो नहीं करूं, ये खाय काय बीती आए बोलू से उसन बीती मन के काय काय तो करूं, गोबर गोमूत्र पाना पत्ती ये मन के मिशान करी ले आम्ही जैविक खाद बना सकू, और आम साग पान ने देख सकू, तेवे आम चो देह पाए बले नगत रह दे ने।
2: आओ, दक ये भेट वार्ता के तो आम रालू ने।
3: ओके।
2: हाले आम चो लगे गोटो गीता से।
3: हो।
2: हाले ये गीत बले सुनान दू।
3: हाले तेवे।

0: सोमारी
1: काय
0: काय मजा गीत रे ने
1: हो काय काय बोलसीत काय पिला मांचे स्कूल मन खुल्ली गुने काय सुंदर गीत सुनून बोलून मन के बोल हरिक लागली काय लेने
0: आओ दक ये गीत के गौरव दिलीप पांडे और उन मंचो संगवारी मन ने
1: हो काय
0: तो दक गीत तो सुना दिलो ने आमचे लगी।

0: तोहर माँ
1: हाँ सुमारी
0: ये जहला तो हम रालू मैं बोलते रहे मचलोगे और गोटो गीता से
1: तुझ मोटरा ने गोटो गीता से
0: उन्हीं का जे गीत के बोले सुन तू ता बोलती रहली
1: आले का सुनू
0: गीत कुरिया मंचना के पच सांगो।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम डांडा माली।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।

कार्यक्रम डांडामाली में आप सुन रहे थे गोविंद राम और साथियों के स्वर में धुरवी लोकगीत। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। रात्रि के 8:15 होने को है। 19 शासकीय भर्ती परीक्षाएं पास करके अनोखा रिकॉर्ड बनाने वाली चारू पांडे से विशेष

0: भेंट वार्ता अब हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।
1: उन्नीस शासकीय भर्ती परीक्षा पास कर अनोखा रिकॉर्ड बनाने वाली चारू पांडे से विशेष भेंट वार्ता, प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर की।

0: श्रोताओं नमस्कार। हमारे इस विशेष कार्यक्रम के साथ मैं रीना त्रिपाठी। श्रोताओं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ऐसा अक्सर कहा जाता है। लेकिन इस पंक्ति को छत्तीसगढ़ की एक होनहार बेटी चारू पांडे ने अपने जुनून से सच साबित कर दिया है। महज 23 साल की उम्र में चारू ने वह कर दिखाया है जिसका सपना लाखों एस्पिरेंट्स देखते हैं। उन्होंने एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और पुलिस समेत कुल 19 सरकारी भर्ती परीक्षाएं पास कर एक मिसाल कायम की है। रायपुर जिले के तुलसी तिल्दा की रहने वाली चारू आज लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं। उनकी सफलता यह साबित करती है कि दृढ़ संकल्प, मेहनत और सही रणनीति के साथ कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। उनकी उपलब्धियों की चर्चा अब सिर्फ छत्तीसगढ़ तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में हो रही है। और श्रोताओं, चारू इस वक्त हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम उनकी उपलब्धियों और उससे जुड़े संघर्ष के बारे में उनसे विस्तार से चर्चा करेंगे। चारू, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: जी, थैंक यू।
0: चारू, सबसे पहले तो आपको बधाई आपकी उपलब्धियों के लिए। चारू, 23 साल की उम्र है आपकी। इस उम्र में आपने एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और पुलिस समेत कुल 19 सरकारी भर्ती परीक्षाएं पास करके एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया है। आप अपनी इस उपलब्धि को किस तरह देखती हैं और क्या आपको कोई सम्मान भी मिलने वाला है इसके लिए?
1: जी, मुझे अभी राष्ट्रपति जी से सम्मान मिलने वाला है एट होम पे 15 अगस्त को। इस उपलब्धि को बस मुझे देख के खुशी होती है क्योंकि मैंने भी कभी ये इमेजिन नहीं किया था कि मैं इतने सारे एग्जाम्स क्लियर कर पाऊंगी।
0: चारू, 19 प्रतियोगी परीक्षाएं पास करना एक बड़ी उपलब्धि है। आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? आपने इसके लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया था?
1: जी, एक्चुअली मुझे मतलब सोची नहीं थी कि कभी इतने सारे एग्जाम्स दूंगी, क्रैक करूंगी। बट ये था मुझे कि एक मुझे अच्छे डिपार्टमेंट पे जाना है। मेरा ड्रीम था कि मुझे फाइनेंस डिपार्टमेंट में ही जाना है, या मैं कोई भी एग्जाम से जाऊंगी, फाइनेंस डिपार्टमेंट ही चूज करना था
0: जी।
1: फिर किसी का रिजल्ट पहले आता था, किसी का रिजल्ट बाद में, इसलिए मैं सारे फॉर्म्स डालते जाती थी, सारे एग्जाम्स देते गई बस।
0: तो आपका लक्ष्य क्या था?
1: मेरा लक्ष्य यही था कि मैं किसी भी स्टेट जॉब हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, बस मुझे फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाना है, यही मेरा एम
0: मतलब
1: था।
0: आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट में ही काम करने का शुरू से मन था जी। चारू, आपने कौन कौन सी प्रतियोगी परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैं? इनमें से कौन सी सफलता आपके लिए सबसे यादगार रही?
1: हाँ, एक्चुअली मैंने एसएससी के जितने भी एग्जाम्स क्लियर किए
0: जी,
1: वो मेरे लिए एकदम ड्रीम कम्स ट्रू जैसा था
0: जी।
1: क्योंकि मैं एग्जाम्स देने के लिए जाती थी, तब मैंने ये एग्जाम देखा था जिसपे एकदम मतलब टाइम इतना कम हमारे पास, इतने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने होते थे। फिर जब ये क्लियर हुआ तो बहुत अच्छा भी लगता था। उसके बाद जो मेरा ड्रीम जॉब था फाइनेंस डिपार्टमेंट में, जैसे कि मुझे ऑडिट डिपार्टमेंट में जाना था, सो मुझे एसएससी सीजीएल के थ्रू ही उस डिपार्टमेंट पे मुझे हुआ, सो इसलिए एसएससी के सारे एग्जाम्स मेरे लिए बहुत वो है
0: जी। चारू, अभी आप कहाँ पोस्टेड हैं?
1: जी, एक्चुअली अभी मेरी पोस्टिंग एसएससी सीजीएल के थ्रू हुई है। मेरी पोस्टिंग चेन्नई में है एज एन असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर।
0: चारू, हम आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि आपकी पढ़ाई करने की दिनचर्या क्या रहती थी, आपने किस तरह से तैयारी की?
1: जी, एक्चुअली मेरा एक टारगेट रहता था कि मुझे इतने टॉपिक्स एक दिन पे कवर करना है, तो वो जितना भी टाइम लगे मैं वो कवर करती थी। एक्चुअली रात को सोने में वही 12-1 बज जाती थी और मुझे सुबह 4 बजे उठना होता था। तो जैसे कि अब हम फोन पे अलार्म सेट करेंगे, क्या होती है वो हम ऑफ करके सो जाते हैं, इसलिए मैं अलार्म सेट नहीं करती थी। मेरी नानी थी, वो मुझे डेली 3:40 में कॉल करके उठाती थी, क्योंकि नानी का कॉल ऐसा रहता था, एक बार आप कट किए या नहीं उठाए तो वो बार बार कॉल करती थी, तो उनका सबसे बड़ा
0: कॉल उनका अलार्म की तरह ही था आपके लिए, तो उनकी बहुत बड़ी भूमिका है इसमें।
1: बहुत बड़ी है।
0: तो आप किस तरह से पढ़ाई करती थी, दिन भर आपका शेड्यूल क्या होता था?
1: दिन भर एक्चुअली स्टार्टिंग के 3-4 मंथ्स तो मैं कोचिंग भी जाती थी, तो 7 to 10 मेरी कोचिंग होती थी
0: जी।
1: फिर कोचिंग से आने के बाद मैं पढ़ाई करती थी। जब ऐसा होता था कि रूम में पढ़ाई का मन नहीं होता था तो मैं लाइब्रेरी चले जाती थी, क्योंकि लाइब्रेरी पे ज्यादा अच्छे से पढ़ाई होती थी। अगर आप वहां नींद आएगा तब भी आप सबको देखोगे पढ़ते हुए, तो खुद को लगता था कि
0: कॉन्सेंट्रेशन भी बना रहता है लाइब्रेरी में,
1: इसीलिए फिर मैं लाइब्रेरी चले जाती थी। फिर थोड़ा ऐसे माइंड फ्रेश करने के लिए एकाग्र होने से घूम के फिर आके रूम में पढ़ाई करती थी।
0: तो पूरा दिन आप पढ़ते रहते थे?
1: हाँ, ऑलमोस्ट मतलब 7 मंथ्स जब तक मैं थी बाहर पीजी में, उस टाइम बस पूरा पढ़ाई ही की मैं।
0: यह भी बताएं कि अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी के लिए आपने कौन सी रणनीति अपनाई?
1: जी एक्चुअली एसएससी में देखेंगे या रेलवे में देखेंगे, इस दोनों में सबसे कॉमन चीज होती है टाइमिंग,
0: जी
1: क्योंकि जितना जल्दी हम जितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाए वो। दूसरी बात ये है कि इसमें हम लोगों को पहले ये समझना जरूरी होता है कि क्या क्वेश्चन हमें छोड़ना है,
0: जी
1: क्योंकि जो टाइम टेकिंग वाली क्वेश्चंस रहती है उसको हमें स्किप करना रहता
0: और
1: है।
0: किसी किसी में नेगेटिव मार्किंग
1: हाँ,
0: भी होती
1: नेगेटिव
0: है।
1: मार्किंग्स भी होती है इस दोनों में ही। तो फिर वही मेन चीज समझना होता है कि क्या क्वेश्चन हमें छोड़ना है।
0: जी
1: उसके लिए मैंने बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट दिए वो
0: जी
1: समझने के लिए। सिलेबस में मुझे ज्यादा डिफरेंस नहीं लगा, किसी में कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा ऐड होती थी, किसी में कुछ टॉपिक्स कम होती थी।
0: जी

0: होता है कि क्या क्वेश्चन हमें छोड़ना है,
1: जी
0: उसके लिए मैंने बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट दिए वो
1: जी
0: समझने के लिए। सिलेबस में मुझे ज्यादा डिफरेंस नहीं लगा, किसी में कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा ऐड होती थी, किसी में कुछ टॉपिक्स कम होती थी।
1: जी
0: सिलेबस में मुझे ज्यादा डिफरेंस नहीं लगा, किसी में कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा ऐड होती थी, किसी में कुछ टॉपिक्स कम होती थी।
1: जी

0: लिया था या स्व अध्ययन पर ही भरोसा किया?
1: एक्चुअली अभी जितने भी एग्जाम्स किया मैंने, उसका कोचिंग मैंने नहीं किया. मैं सोशल मीडिया से पढ़ाई करती थी. सोशल मीडिया पे अलग अलग टीचर्स होते हैं, वो लोग सारे रील्स डालते थे, तो उनकी
0: जी
1: हेल्प से फिर मैंने पढ़ाई किया.
0: चारु, आजकल सोशल मीडिया का दौर है और जो लोग टॉप करते हैं या कोई बड़ी प्रतियोगी परीक्षाएं पास करते हैं, उन्हें अक्सर यह कहते सुना जाता है कि पढ़ाई के दौरान उन्होंने सोशल मीडिया से पूरी तरह से दूरी बनाई हुई थी। तो आपने किस तरह से सोशल मीडिया और पढ़ाई के बीच में सामंजस्य बिठाया?
1: जैसे कि उस पे मैंने यूजीसी नेट जेआरएफ भी क्लियर किया हुआ है,
0: जी
1: जिसका नोट्स मैंने सोशल मीडिया से मैंने वो खरीदा, टॉपर्स का नोट्स. तो वो नोट्स और प्रीवियस ईयर सॉल्व करके ही मैंने यूजीसी नेट क्रैक किया. देखिए, जैसे कि वो ऐसा कंटेंट शो करते हैं सोशल मीडिया जिसपे हम इंटरेस्ट करेंगे.
0: जी
1: अगर एक बार हम स्टडीज वाला चीज देखेंगे तो वो हमें बस वही वही शो करेंगे.
0: हाँ जी
1: तो वो और अच्छे अच्छे सजेशन देके वो हमें और अच्छे अच्छे वीडियो सजेस्ट करते हैं, जिससे बहुत हेल्प होता है. तो जैसे कि अब जब हम पढ़ाई का ही देख रहे हैं, तो जब भी हम खोलेंगे सोशल मीडिया, पूरा हमें वही सब ही दिखाएगा, तो फिर डिस्ट्रेक्शन की तो बात ही नहीं है.
0: तो मतलब वो
1: जी
0: आपके लिए हेल्पफुल रहा,
1: जी
0: आपकी
1: बहुत
0: तैयारी
1: हेल्पफुल
0: के
1: रहा.
0: लिए।
1: जी
0: जी चारू, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के दौरान सबसे बड़ी चुनौती क्या रही?
1: नहीं, बस थोड़ा थोड़ा बीच बीच पे डिमोटिवेशन होता था कि कर
0: जी
1: पाऊंगी या नहीं.
0: जी
1: बाकी और कुछ दिक्कत नहीं हुआ. ऐसा कुछ होने से पेरेंट्स होते थे, मतलब मोटिवेट करने के लिए वो लोग.
0: चारू, क्या आपको याद आता है कभी ऐसा भी समय आया हो जब आपको निराशा का सामना करना पड़ा हो? और अगर हाँ, तो उससे आप कैसे उभरी?
1: मुझे निराशा का सामना तभी करना पड़ता था जब मैं मॉक टेस्ट देती थी और मार्क्स
0: जी
1: कम आते थे.
0: जी
1: तो मतलब ऐसे ही देखते देखते मतलब पता चला भी हमारे पास सबसे ज्यादा एआई का यूज करते हैं हम.
0: जी
1: तो वहां से मैंने एनालिसिस किया, तो एआई मेरे बहुत ज्यादा हेल्प किया. मतलब वो बताता था कि मैं कैसे मिस्टेक्स कर रही, कैसे इम्प्रूव करना है. तो अगर सबसे ज्यादा मोटिवेशन मुझे मिला है तो
0: जी
1: एआई से मिला है.
0: आपने जो उपलब्धि हासिल की है उसमें आपके परिवार और शिक्षकों की क्या भूमिका रही?
1: शिक्षकों की भी बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि जितना भी मैंने उनसे पढ़ा उसी से ही जाके मैं पूरा सीखी. फैमिली फैमिली से मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला, 100% सपोर्ट मिला.
0: जी
1: जो भी पढ़ना चाहती थी, जहां भी रह के पढ़ना चाहती थी, उन्होंने पूरा सपोर्ट किया मुझे. सबसे ज्यादा सक्सेस पे मेरा मतलब देखेंगे तो मेरे फैमिली से ऑलमोस्ट सारे टीचर्स, मेरे ग्रैंडफादर, मेरे ग्रैंड मदर, सारे टीचर्स, पैटर्नल देखेंगे या मैटर्नल देखेंगे तो सबसे ज्यादा उनका वो रहा. मेरे दादा स्वर्गीय श्री हीरालाल पांडे जी,
0: जी
1: वो भी टीचर थे. जो मेरे नाना जी थे, मतलब
0: जी
1: स्वर्गीय श्री श्याम सुंदर तिवारी जी,
0: जी
1: मतलब उनका शुरू से बिलीव था मेरे ऊपर. जब मैं छोटी थी तब से ही वो मुझे बोलते थे मेरी अफसर बिटिया. वो
0: जी
1: तब से ही बहुत बिलीव था उनको मेरे ऊपर कि मैं जाके आगे कुछ ना कुछ
0: तो
1: अच्छा
0: आपने अफसर
1: करूंगी.
0: बन के दिखा दिया। और
1: जी
0: फ्रेंड्स का क्या रोल रहा आपके जीवन में?
1: फ्रेंड्स का बहुत अच्छा रोल था. मतलब जो भी मेरे फ्रेंड्स थे, जब मुझे ये हुआ कि मुझे कोचिंग करना है, मतलब
0: जी
1: ये अब देखेंगे छत्तीसगढ़ पे सबसे ज्यादा कोचिंग होती है सीजीपीएससी की,
0: जी
1: तो मैंने बोला कि मुझे सीजीपीएससी की कोचिंग करनी है. तो तब दो फ्रेंड्स थे मेरे, वो मेरे साथ घूम घूम के पूरे डेमो अटेंड करते थे. फिर
0: अच्छा
1: जब मैंने बोला कि मुझे पीजी पे शिफ्ट होना है, उन्होंने पूरा मेरे लिए अच्छा सा पीजी ढूंढा. फिर अब पीजी पे रह रहे तो ऑब्वियसली हम लोगों को टिफिन सर्विसेज चाहिए होगी,
0: जी
1: सारा अरेंजमेंट्स वो लोग करते थे.
0: चारू, आज के युवाओं में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर काफी दबाव रहता है, आप उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगी?
1: मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि आज की डेट पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम लोगों को काम नहीं मिलेगी,
0: जी
1: कोई वर्क नहीं है. आज की मतलब इतने सारे ऑप्शंस होते हैं हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम, तो ऐसे निगेटिव नहीं होना चाहिए. क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम्स भी देखेंगे तो स्टेट सेंट्रल इतनी सारी होती है.
0: जी
1: अगर हम अच्छे से टारगेट करके मेहनत करेंगे तो कुछ ना कुछ सक्सेस मिलेगा. अगर एक अटेम्प्ट में नहीं मिल रहा, दो में नहीं, लेकिन वो मिलेगा फ्यूचर में कुछ ना कुछ. मतलब बस ये कहना चाहती हूँ कि एक एग्जाम में ना रहे वो, जैसे कि
0: ऑप्शंस बहुत
1: हाँ
0: अवेलेबल
1: उसके
0: हैं,
1: सिमिलर ऑप्शंस होते हैं उस पे वो ट्राई करना चाहिए उनको.
0: डिमोटिवेट बहुत जल्दी हो जाते
1: जी
0: हैं आजकल के
1: वही.
0: बच्चे और युवा जो हैं।
1: जी, उनको बस वही है कि जो सिमिलर सिमिलर है उस पे भी ट्राई करते रहना चाहिए.
0: जी ऑप्शंस देखने
1: हाँ,
0: चाहिए।
1: ऑप्शंस देखने चाहिए.
0: यदि आपको अपनी सफलता का मंत्र एक वाक्य में बताना हो तो वह क्या होगा?
1: देखिए, उसके लिए तो मैं बस यही कहना चाहूंगी, जितना पढ़ रहे उतना
0: जी
1: अच्छे से करें. सारा कंप्लीट करने के चक्कर में पूरा वो खराब ना करें. जो पढ़ रहे उसको 100% दें. 80% कंप्लीट कर लिया बाद में भूल जा रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए. जो पढ़ रहे वो ऐसा पढ़े कि दोबारा रिविजन करने की भी जरूरत ना पड़े उनको. ऐसे धीरे धीरे फिर सिलेबस कम्प्लीट होने के बाद उनसे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है कि जितना ज्यादा से ज्यादा वो मॉक टेस्ट दें. क्योंकि मॉक टेस्ट देने से हर बार हमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा.
0: और कुछ लोग ऐसा दिखने में आता है कि पढ़ते बहुत ज्यादा हैं लेकिन रिजल्ट जो होता है उनके अनुसार नहीं आता है, और कुछ लोग कम समय में भी पढ़कर अच्छा बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं, तो वो किस तरह कर पाते हैं?
1: देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं करना है हम लोगों को।

0: जो लोग ज्यादा टाइम तक पढ़ते हैं उनको देखेंगे आप उनका स्ट्रेटेजी, तो वो लोग पूरे सिलेबस कंप्लीट करते हैं। लेकिन हमें स्मार्ट स्टडी करना है, जो पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़ना है। देखिए हमारे पास ब्लूप्रिंट्स होती है, पता
1: जी
0: चल जाती है कि किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा, तो बस वो सब फॉलो करके हमें पढ़ना चाहिए। रीजनिंग होती है, मैथमेटिक्स होती है, इसको जितना ज्यादा अच्छे से समझे हम वो उतना अच्छा है।
1: चारू, किसी भी परीक्षा का परिणाम आने के बाद आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होती थी? क्योंकि आपने कई परीक्षाएं पास की हैं, तो जब किसी का परिणाम आता था तो आपके मन में क्या बात आती थी कि बस हो गया या दूसरी परीक्षा की तैयारी करना है?
0: ऑलमोस्ट पैरेलली सबके रिजल्ट्स आते गए,
1: जी
0: तो ये था कि मतलब कोई से भी एक जॉब पे मुझे करना है, जो भी बेस्ट होगा उस पे ज्वाइन करना है मुझे। तो मतलब किसी का रिजल्ट पहले आया, किसी का लेट से आया, तो रेलवे पे जो मेरी पोस्टिंग हुई उदयपुर पे,
1: जी
0: तो स्टेशन मैनेजर पे पोस्टिंग हुई, तो जब मैं उसे मैं इस पे ज्वाइन कर ली थी, मैं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर पे, तो उस पे मेरा ज्वाइन करने का बहुत मन था। तब
1: जी
0: लगा कि ये छोड़ के वो ज्वाइन करती हूँ,
1: जी
0: बट जब मुझे पता चला कि उस पे मुझे स्टडी लीव नहीं मिल पाएगी
1: जी
0: क्योंकि अभी मैं पीएचडी भी कर रही, सो वो फिर छोड़
1: तो
0: के फिर
1: अभी
0: वही।
1: आपका और लक्ष्य क्या है? अभी और आपको पढ़ाई करना है?
0: हाँ एक्चुअली अभी मैं पीएचडी कंप्लीट करना चाहती हूँ, उसके
1: जी
0: बाद जैसे कि टाइम मिली तो फिर आगे एमफिल वगैरह करने का सोचा है मैंने।
1: तो अभी और भी प्रतियोगी परीक्षाएं देने का मन है आपका?
0: नहीं नहीं अब
1: तो आप संतुष्ट हैं?
0: हाँ मैं
1: जब कोई
0: संतुष्ट हूँ।
1: रिजल्ट आता था तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होती थी?
0: मैं तो सबसे पहले पापा से वो शेयर करती थी, मैं को इतनी खुशी नहीं होती थी, बस पापा मम्मी की खुशी देख के मुझे बस वो खुशी होती थी, बस मुझे लगता था कि निकल गया एग्जाम, बस यही होता था।
1: जी बहुत सारे युवा श्रोता आप इस समय आपको सुन रहे हैं प्रदेश भर से, आप उन्हें अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: मैं बस उनसे यही कहना चाहूंगी कि वो बिल्कुल भी डीमोटिवेट ना हो, बस कोशिश करते रहे, क्योंकि जितना हम मेहनत करेंगे, जैसे कि एक एग्जाम क्लियर नहीं हुआ उससे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, वो क्लियर नहीं हुआ कुछ रीजन से, तो बस उस पर जाके देखे कि वो क्लियर क्यों नहीं हो पाया, कहाँ पे उनसे मिस्टेक हो रहा, और उस पर थोड़ा सा हार्ड वर्क करके नेक्स्ट अटेम्प्ट दे, वो डीमोटिवेट बस ना हो।
1: चारू, अंत में एक बार आपको हमारे पूरे आकाशवाणी परिवार की ओर से पुनः बधाई। आप हमारे स्टूडियो में आई, आपने श्रोताओं को अपने जीवन और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी कई सारी जानकारियां साझा की। हम आपका आभार व्यक्त करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू।
1: तो श्रोताओं, हमारे इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। अब हम आपसे विदा लेते हैं, नमस्कार।

ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। रात्रि के 8:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम पीला मन काजे गोट। प्रस्तुति होगी बलबीर सिंह कच्छ की।

सपाळ पिलामनके मचवाटले खुबे खुबे मया आरु लाड पिलामन काजे गोठ आरु ये कार्यक्रम ने आपन मन काजे आमी कई कसन बल्लने आमचो देश काजे लड़लो स्वतंत्रता सेनानी मंचो कहनी के आरु आमचो कुरीति मन के गुचातो समाज सुधारक मन के समाज सुधारक मंचो गोट मन के और कई कसन आमचो बाढ़ती काजे पूरे नेतो ज्ञानी मंचो गोट मन के संगे संगे आमचो देश चो रीति नीति बाजार मंडई रुसुम ये सपाए गोट के आमी आपन मन के ये कार्यक्रम ने सुनाऊं दे जनाऊं दे जे चो लेकाए की आपन मन जानुक सकासे आरु आपन मंचो जोन ज्ञान आए जोन बुद्ध

आए हुन बाढ़ते जाए दे आरु बड़े होलास बल्ले ने उमचो जीवना ने काई अटकनी एवकलाय नी सके। तो आजी आमी आपन मन के सुनाओ से क्रांतिकारी वीर सहित झाड़ासिरा चो कहनी के त्वाले सुना झाड़ासिरा कोन रला। क्रांतिकारी माने झाड़ासिरा चो जन्म आगरवारा परगना चो गांव बड़ियारापुर चो मांझी आरु माटी पुजारी परिवार ने हो रहे। जसन की पुरका बेरा परगना हिसाब चलते रहे। परगना कई एक गांव मन मिसुन भाती बने से जिचो मुखिया मांझी रहे से। यही समय ने आगरवारा परगना बड़ियारापुर गांव चो मांझी आरु माटी पुजारी घरे पूस महीना ने बेटा चो जन्म होली जिचो नाव रामू संगाथोर होली। जूना हिसाब ने गांव चो जिम्मेदारीन माटी आया अपनी गांव चो कोनी माने उपरे देवी देवता हिसाब ने एवुआ जेके सिरहा बलतोर होय से। रामू चो उपरे जुआन समयाले गांव चो जिम्मेदारीन माटी आया बासन बूंदीन एते रहे। हुदली दायले रामू के सिरहा चो नावले जानुक मुरियाला। धीरे धीरे लगे लगे चो गांव मन चो लोग मन बले हुनके सिरहा हिसाब ने जानुक धरला। आगे लगे लगे चो गांव चो लोग मन जानते रला। पाछे लाफी लाफी चो गांव मन ने बले सिरहा चो नाव होते गेली। संगे संगे झाड़ा फूका आरु जड़ी बूटी चो पोरखती हिसाब ने ज्ञान बले हुन मन लगे रहे। हुन रान बंचो जड़ी बूटी ले बाद मारा उपाय देते रला। असनी झाड़ा फूका करतो लागुन पाछे हुनके झाड़ा सिरहा चो नाव ले लोग मन जानुक धरला। जूना हिसाब ने आरु एवेचो हिसाब ने बले सिरहा गोटोक नाव कारी माने हो हुआ है। हुंचो बाबा आगरवारा परगना चो मांझी होतो लागुन परगना ने झगड़ा डंचो निपटारा और नंगत नियाव करुन नंगत सलाह बले लोग मन के देते रहे। झाड़ा सिरहा चो उपरे आपलो बाबा चो नंगत नियाव कारी फासला के दखुन खूबे असर होते गेली। झाड़ा सिरा आपलो झाड़ा फूका आरु जड़ी बूटी चो बाद मारा उपाय देतो लागुन आगरवारा परगना संगे संगे दूसर परगना मनने बले नावकारी रहे। हुंचो बाबा आगरवारा परगना चो मांझी आरु माटी पुजारी रहे। हुंचो मरनी होतो के पुरखती हिसाब ने बाबा चो पद बेटा के सौंपतो रुसुम के मानुन गांव चो आरु परगना चो मांझी मन चो पूरे सिरहा के पुरखती रुसुम मन संगे पागा बांधुन माटी पुजारी आरु मांझी पद के सौंपला। झाड़ा सिरा के जिम्मा मृतो के पुरखती हिसाब ने होतो मंडई के आपलो माटी पुजारी बनतो के मनातोर ये पहिल मौका रहे। झाड़ा सिरा चो सिरा होतो लागुन आरु हुंचो बाबा संगे हुन देवी देवता मंचो सेवा अर्जी ने संगे संगे जातो लागुन पुरखती बराले चलते एतो व्यवस्था मन के आपलो नंगत वाटले और बले नंगत करुन तीनों गांव मन चीतापुर एरंडवाल आरु बड़ियारापुर चो मुखिया माटी पुजारी मन पटेल मन सिरहा मन गुनिया मन आरु मांझी मन संगे बसुन भाती गांव चो देवी देवता मन ले हुकुम धरुन तीनों गांव ने दूसर दूसर दिने पक्की करुन तीनों गांव चो कतवाल मन के आमा डारा धरुन हाट हडरी और गांव चो पारा मन ने हाका पाड़ुन आरु लगे लगे चो देवी देवता मन के डोंडा माल देउन मंडई काजे हाक देतोर होते रहे। सबले आगे मंडई चीतापुर ने फिर एरंडवाल ने आरु सरासरी ने बड़ियारापुर ने मंडई होलो पाछे हाक दिलो देवी देवता मन आंगा डोली छतर लाट के हुरकती रुसुम हिसाब ने एरंडवाल चीतापुर आरु कोंदन पालचो देवी देवता मन के पेरी भेंट संगे बीदा देतोर होते रहे। असन नंगत सियानी हिसाब ने लोग मंचु मंजी एका मिलुन मिशुन रतो उवाट आरु माने माने चो मंजी गोट की सुतूर ने रतो काजे झाड़ा सिरा मंडई चो रुसुम ने कई बदलाव कर लो। एवे बले चीतापुर एरंडवाल आरु बड़ियारापुर चो मंडई के तीनों गांव चो गोटक गोटक आखर के मिसाउन चिंडर महामंडई चो नावले मंडई बनातोर रुसुम एवे बले चलते ऐसे। असन किसम झाड़ा सिरा सिरा चो नाव ने जान चिंतो रलाचे संगे संगे हुन माटी पुजारी आरु मांझी होतो के
हुंचु ज्ञान आरु काम करतु नंगत उवाच गुड बात सपाय गांव आरु परगना मन ने हो धरली। ये सपाय होतो के परगना मंचु मंजी एका और नंगत विश्वास और बले पक्की हो धरली। माजी कुटुमचु देवी चु सकत इत्रो परछट रहे कि घर चु देवगुड़ी थाने कएक पशु जनावर जसन बाघ चितर सामर गमर बेंद्रा मंच घोड़ा आगतले अमर तेरला। माटी पुजारी आपलो मन ने देव धामी के सुमरुन दिलो ने हुन पशु जनावर मन गांव कारी लोग मन के काई नुकसान नी करुन आपने रान माटे जाते जाओत। तो आजी बले घर चो देव ठान ने गोटोक असन डेरी गाड़ लो आसे जथा गोटोक हार गंवर एवन डेरी ने लगड़ी होतो के हुन डेरी टेढ़ा होन गेली से। हुन डेरी एबे बले हुसने चे टेढ़ा यासे जेके आजी बले लोग मन गंवर डेरी चु नाव ने जानसोद। असन किसम बड़ियारापुर चु मांझी कुटुम ने देवधामी मन चु कृपा हरमेशा हुन मन संगी बनु रहे। झाड़ासिरा माटी पुजारी आरु मांझी हो तो लागुन आपलो नंगत नियाव हिसाब ने मुखिया रला। हुन नंगत विचार करुन फासला धरते रला संगे संगे सपाय के धरुन चल तो हिसाब लगे लगे चो गांव पर गनाने हुन मंचो आहुर बले नाव होते गेली। यही लागुन जेब मोरिया विद्रोह करतोर होली हुदल दाए सपाय पर गनाचो मांझी मन सुतोर हुन ये मन के आपलो मुखिया बनाला। झाड़ा सिराब चो हिसाब ने सपाय मिलुन में सुन पानी रान भूई यथा चो संस्कृति समाज चो रीति नीति नियम धियम के बचातो काजे अंग्रेज मन संगे सामंतवादी पूंजीपति मन संगे लड़ तो काम करला। असनी झाड़ा सिरा आपलो लड़ाई के लड़ते लड़ते अंग्रेज मंचो हाथे पड़ुन मई महीना ने सन 1876 ने इंद्रावती घाट लगे शहीद होन गेला। तो पिलामन दखा आपन मन क्रांतिकारी वीर शहीद झाड़ा सिरा चो ये कहानी के सुनलास। तो असने ची आमी कई कहानी मन सुनाते रहूंदे एदाएं झाड़ा सिरा उपरे गोटो गीत आसे अल एक गुद के सुना।

हाँ तो पिलामन दखा आजी आपन मन क्रांतिकारी वीर सही झाड़ा सिरा चे गोट के कहनी के सुनलास जानलास गीत बोले सिनलास तो असने आमी रोजदिना आपन मन काजे कैक नंगत नंगत गोट मन आमी आनते रहूं दे सुनते रहा जानते रहा आरु आप लो ज्ञान क्या है आप लो बुद्धि क्या है बढ़ाते रहा बड़े होलास बल्ले ने अपन मन के खूब्बे काम एवकलाए सके दे तो सप्पाए पीला मन के फेरा रख मोचो बाटले खूबे खूबे माया आरू

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम पिला मन का जे गोट, प्रस्तुति थी बलबीर सिंह कच्छ की। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। रात्रि के
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रौद्योगिकी में प्रगति तभी हो सकती है जब उसका लाभ सब तक पहुंचे। उन्होंने पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन में भारत के तेजी से हो रहे डिजिटल परिवर्तन में प्रौद्योगिकी के उपयोग का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने भारत में निवेश के अवसरों और विस्तार योजनाओं पर फ्रांस के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ चर्चा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौतों का एक ऐतिहासिक दस्तावेज बताया। यूक्रेन ने एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार रूस के मॉस्को में तेल रिफाइनरी पर हमला किया और चीन में विश्व मुक्केबाजी कप में मीनाक्षी हुडा क्वार्टर फाइनल में पहुंची। कल क्वार्टर फाइनल में चार भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में विवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत वित्तीय समावेशन, शिक्षा, कृषि और अन्य क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
2: द मैसेज आई शेयर देन एट विवाटेक 2021, वेयर कन्वेंशन फेल्स इनोवेशन कैन हेल्प। इंडिया हैज बीन गोइंग थ्रू अ रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज पावर्ड बाय टेक्नोलॉजी, फ्रॉम क्रिएटिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम टू द वर्ल्ड लार्जेस्ट डिजिटल पेमेंट platforms. We are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture and more.
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि उथल पुथल भरे इस दौर में प्रौद्योगिकी का लाभ सभी को मिलना चाहिए।
2: AI must improve lives, widen access, drive growth and also help us sustain a healthy planet. Our participation as the AI country partner at VivaTech 2026 reflects this very vision. For India, AI means all inclusive.
1: प्रधानमंत्री ने वैश्विक नवोन्मेषकों से भारत के साथ मिलकर काम करने और ऐसी नई तकनीक विकसित करने का आह्वान किया जो सबके लिए लाभकारी हो। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा।
2: 2026 इज अ स्पेशल ईयर फॉर इंडिया एंड यूरोप। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर We concluded the historic India-EU Free Trade Agreement. This agreement will expand our trade and investment, and it will open up many pathways for the exchange of talent, technology and tourism.
1: इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया। एक रिपोर्ट।
3: सेंटकोमा के चेयरमैन और सीईओ बेनवा बेजा ने कहा कि भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए एक बड़े विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में उभर रहा है। मिस्त्राल एआई के सीईओ आर्थर मेंच ने कहा कि कंपनी भारतीय भाषाओं के लिए सहयोग बढ़ाने, एआई अनुसंधान साझेदारी का विस्तार करने और संप्रभु एआई पर गहरा सहयोग तलाशने की इच्छुक है। सीएमएसीजीएम के चेयरमैन और सीईओ रेडॉल्फ सादे ने कहा कि भारत हरित जहाज निर्माण के केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
1: प्रधानमंत्री आज भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद श्री मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष पुनर्परीक्षा आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 52 भारतीय संस्थान QS विश्वविद्यालय रैंकिंग 2027 में शामिल हुए हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली वैश्विक स्तर पर 118वें नंबर पर है। ये भारत का सर्वोच्च रैंक वाला संस्थान बना हुआ है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, बम्बई और मद्रास विश्व के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में शामिल हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रैंकिंग में 52 भारतीय संस्थानों के शामिल होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में कई समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता की। इन बैठकों में सहकारी बैंकिंग, जैविक उत्पादों और सहकारी निर्यात को मजबूत करने के राष्ट्रीय प्रारूप की समीक्षा की गई। सहकारी बैंकिंग से संबंधित पहलुओं की समीक्षा के दौरान श्री शाह ने प्रौद्योगिकी अपनाने, साइबर सुरक्षा, डिजिटल भुगतान और बेहतर सेवा वितरण के माध्यम से सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की प्रगति की समीक्षा की। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारत में अमरीका के सर्जियो गोर से मुलाकात की। इस दौरान आतंकवाद और मादक पदार्थों के खिलाफ दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई। गृहमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के प्रसारित कर रहा है। आज बात नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
4: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2022 में झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। इसी वर्ष फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के तहत झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों को नक्सली प्रभाव से मुक्त कराया गया। ऑपरेशन थंडर स्टॉर्म के तहत झारखंड के सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम और खूंटी जिलों में नक्सलियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। वर्ष 2025 में तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने बचे हुए नक्सली कैडर को बड़ा झटका दिया। बस्तर के निवासी ने सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का अपना वादा पूरा किया है।
5: तो उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करके दिखाया, तो मोदी सरकार को, अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
6: यहाँ पर आजकल कोई डर का माहौल नहीं है, कोई भी बच्चे यहाँ पे फ्रीली अपना काम कर पाते हैं।
4: इन अभियानों के परिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। इस दौरान कई बड़े नक्सली नेताओं का भी खात्मा हुआ, जिनमें हिडमा, कादरी सत्यनारायण रेड्डी, गणेश उइके और नक्सली महासचिव बसवराजू शामिल हैं। सुरक्षा अभियानों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले टेम्बू उराव ने कहा कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म हो गया और लोग शांति और सद्भाव के साथ रह रहे हैं।
7: हमारा क्षेत्र पूरी तरह से उग्रवाद के गिरफ्त में था,
0: वहाँ अमन चैन एकदम नहीं था। हम लोग को दिन में भी निकलने के लिए डर लगता था। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार बना है तब से धीरे धीरे करके अब उग्रवाद समाप्त हो गया है और आज हम लोग अमन चैन और बढ़िया से जीवन यापन कर रहे हैं।
4: नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे नक्सली संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। विशेष अवसंरचना योजना के तहत स्पेशल फोर्स, राज्य खुफिया शाखाओं और जिला पुलिस को मजबूत बनाने के लिए 1,761 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 596 सुदृढ़ पुलिस थानों का निर्माण भी किया गया। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।
2: ये आकाशवाणी है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक दस्तावेज और सशक्त ईरान का संदेश बताया है। उन्होंने कहा कि शांति केवल आपसी सम्मान के

0: माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने वैश्विक शांति के प्रति ईरान की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए गरिमा, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय सहयोग को बनाए रखने का भी आश्वासन दिया। यूक्रेन ने रूस की एक तेल शोधन संयंत्र पर हमला किया। एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार ऐसा हमला हुआ है। रूस के रोस्तोव क्षेत्र में भी अन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। रूस ने 550 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन नष्ट किए। हमले के बाद मॉस्को के 4 हवाई अड्डों से उड़ानें रोक दी गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 21 जून को कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि कार्यक्रम के लिए 38,000 लोगों ने पंजीकरण करा लिया है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने आज आकाशवाणी चेन्नई में पद्मश्री से अलंकृत डॉक्टर आर श्रीधर को सम्मानित किया। डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि डॉक्टर श्रीधर ने अपने करियर के दौरान रेडियो प्रोग्रामिंग में असाधारण नवाचार किए। आकाशवाणी और दूरदर्शन के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने भी डॉक्टर श्रीधर को भारतीय प्रसारण में क्रांतिकारी व्यक्ति बताते हुए उनकी सराहना की। बम्बई शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगातार पांचवें दिन बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 254 अंक बढ़कर 77,410 पर और निफ्टी 82 अंक बढ़कर 24,168 पर दर्ज हुआ। मिजोरम की सत्तारूढ़ जोरम पीपल्स मूवमेंट ने आज राज्यसभा में अपना पहला प्रतिनिधित्व हासिल कर लिया। पार्टी नेता के लालत लुआर गकीमा ने राज्य की एकमात्र सीट पर जीत हासिल की। मीनाक्षी हुड्डा चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मीनाक्षी ने पोलैंड की नतालिया कुचेवेस्का को 5-0 से हराया। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर चुकी हैं। उधर मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खारब और अस्मिता चलिहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मौसम विभाग ने इस सप्ताह पूर्वोत्तर भारत और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र तथा सिक्किम के कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकल में कल तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रौद्योगिकी में प्रगति तभी हो सकती है जब उसका लाभ सब तक पहुंचे। उन्होंने पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन में भारत के तेजी से हो रहे डिजिटल परिवर्तन में प्रौद्योगिकी के उपयोग का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने भारत में निवेश के अवसर और विस्तार योजनाओं पर फ्रांस के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ चर्चा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक बताया। और चीन में विश्व मुक्केबाजी कप में मीनाक्षी हुड्डा क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी and I am Subhadra Ramachandran with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says technology can lead to progress only when it's democratized. Highlights use of technology in India's rapid digital transformation at Viva Tech Summit in Paris. Prime Minister also holds discussions with leading French business leaders on investment opportunities and expansion plans in India. Education Minister Dharmendra Pradhan chairs high-level review meeting to assess preparations for NEET UG re-examination scheduled on Sunday. Iranian President Masoud Pezeshkian describes newly signed MOU between Iran and US as a historic document. Ukraine strikes a Moscow oil refinery for the second time within a week. And Meenakshi Hooda advances to quarterfinals of World Boxing Cup 2026 in China. 4 Indian boxers to be in quarterfinal action tomorrow. Prime Minister Narendra Modi today projected India as a global hub of innovation and technology while addressing the Viva Tech 2026 summit in Paris. The Prime Minister said, technology can lead to progress only when it's democratized. Mr. Modi urged global innovators to work with India and deliver for all.
2: India believes that in this era of disruption, technology must deliver for all.

ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। रात्रि के 9:15 हुए हैं। प्रस्तुत है वार्ता कार्यक्रम ग्राम पंचायत की विकास गाथा। वार्ताकार हैं बलबीर सिंह कच्छ।

गांवकारी सियान सजन दादा दीदी माय माता बहिन मन बुता करिया के केवे बुता निफावे मंत्र ठग लोकचू बारा फांदा पंचायती राज मुंडरा ने मिरलो आमचू हक मन भित्रे गोटक हक चू मुंडरा के अजी ढील तो काजे मैं बराबर समिया ने अमरले अले मैं मुंडरा के ढीले से तुम्हें सपा धरा अरु आप लो जीवना के उजर करा।

ग्राम पंचायत और ग्राम सभा गांव की बाठ दकातो बीती सबले बड़े सभा है और बाठ धरुन पूरे हिंड तो हक आम के पंचायती राज अधिनियम ने मिरली से ए भीतरे आम के गोटोका से हुनाए आप लोग घरचो नगद जीवना चला तो उवाट बल्ले घरचो जम्माए माए बहिन जुआन लोग बल्ले 18 बरख ले बड़े लोग जोन काई दूसर काम नी जानोत सिर्फ देह चो मसागत करुन जीवना चलासोत असन लोग काजे सरकार बनाली महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी अधिनियम 2005 जैकि आमी बलू से रोजगार गारंटी योजना गांव चो असन लोग जे दूसर काम नी सिकला से सिर्फ देह चो मसागत करून जीवना के चलासोत असन लोग कोनी फोका नी बसुरो जे खेती कमानी समिया ने खेती बाड़ी करसोत और दूसर समिया ने एमन लगे काम बुता नी रहे असन बायले मनुक गरीब लोग आदो समिया ने फोका नी बसुरो एमन के मजदूरी काम मीरो जे चो जांगर चोला नगद चले से हुन फोका नी बसुरो असन लोग चो घर के चलातो काजे गांव ने काम मीरो बलते असन लोग काजे रोजगार गारंटी योजना सरकार मोर कर ली एक आम के करतो काजे सरकार सबले पहिल राज्य स्तर जिला ने जनपद ने अधिकारी आरु कर्मचारी मन के संगाली आरु पंचायत मन ने काम करतो नियम सांगली गांव ने काम मूर कर तो काजे सबले पहिल परिवार रोजगार कार्ड बल्ले जाप कार्ड बना तो नियम होली ये जाप कार्ड ग्राम पंचायत बनाली आरु एबे बले 18 बरख पूर्ते गेले जाप कार्ड बनाए से जाप कार्ड ने कचो नाव के जोड़तो राय आरु कचो नाव के काटतो राय ये काम कर तो काजे बले ग्राम पंचायत के ताकत आरु हक मिरली से परिवार रोजगार कार्ड नी मिरले नहाले परिवार रोजगार कार्ड ने काई गलती रले हुन परिवार सरपंच लगे आपत्ति करुक सके असन करले पंचायत हुनके हफ्ता दिन भीतरे सुधराउन नोआ कार्ड दे से असन कार्ड बनालो पाछे लोग गांव ने रोजगार काजे दरखास्त देउकलाए सकोत रोजगार काजे आवेदन दिलो ने पंचायत आपलो ग्राम पंचायत हल्का ने पहले चलतो काम ठान ने यून बुता करतो काजे सांगे दे नहले नुआ काम मूर होतो गोट के सांगुन बुता काम ने एतो काजे बले दे रोजगार गांव ने मिर्तो काजे जाप कार्ड बनालो कम ले कम 10 लोग के दरखास्त देव पड़ुआ असन दरखास्त दिलो लोग के घर ले 5 किलोमीटर भीतरे काम देतो नियम ए रोजगार गारंटी योजना ने आसे गांव चो लोग के गांव ने काम दे तो भीतरे पंचायत जिला ले कई काम मांगुन पास कराउ सके हुन भीतरे होए से पानी थेबा तो उवाट बंधान चेक डैम स्टाफ डैम झरन विकास बूटा मंडा तो काम सूक्ष्म लघु सिंचाई काम बागवानी मेड़ बंधान तालाब घरी करतो भूमि विकास कुकड़ा खोली बोकड़ा खोली पशुधन कोठा जसन कई काम गाँव ने पंचायत मूर कराउक सके रोजगार गारंटी काम थाने जे काम बुता के मनुक करुक सके हुन काम बुता के मशीन ले करा तो मनाए ए काम ने मनुक चो मसागत हिसाब ने रोजी तय होली से ए काम ने ठेकेदारी नियम नी चले रोजगार गारंटी काम थाने मलम पट्टी प्राथमिक स्वास्थ्य वार्ड पीऊ तो पानी चो वार्ड छाए वार्ड आरु पीला मन काजे झूला घर पीला खेला तो वार्ड बले करू रतो नियम आसे रोजगार गारंटी थाने काम बुता करतो बेरा कोनी खोड़िया लूला हुन जाए दे नहाले कोनी मरुन जाए दे असन लोग के नहाले उनचो परिवार चो पात्र लोग के उपरा पैसा दे तो नियम बले आसे रोजगार गारंटी काम बुता ने बायले और मनो दोनों के समान रोजी दे तो नियम आए जे बले यथा काम बुता करे दे एचो हिसाब रोजगार गारंटी जाप कार्ड ने बले चेगे दे
काम करो बिता आप लोग कागज पत्र संगे संगे जाप कार्ड ने बले लिखे दे।

ग्राम पंचायत भित्रे गांव ने कितरो लोग जाप कार्ड बनाला, कितरो लोग काम मांगला, कितरो लोग काम करला, कितरो दिन ने काम सरली, काम के शर्तों काजे कितरो बायले और मनुख भूता करला, कितरो लोग के काम चो पैसा मिरली, कितरो लोग के पैसा मिरतो बाचली से इजमाए लोग के पूरा पैसा मिरली। मूल्यांकन समिति मस्टर रोल के दखुन ग्राम सभा बैठक ने पूरा गोट के सांगे दे, हुनी काजे ग्राम सभा जातो राय। आमी असन वाटले गांव ने काम मूर कराउन कुलीभूति करुक सकूं, मंतर गांव ने काम मेरे से बलून अचय भरोसा ने रले, पेट के चला तो इतरो नफा तो कमावा, मंतर जुगे बाढ़ती नी करुक सकूं। जुगे कमा तो काजे, जुगे बाढ़ती कर तो काजे, आम के नुआ नुआ काम करुक सीख तो राय। गांव चो जुआन लेका लेकी नंगत काम सीखोत, अनगर पैसा कमाओत, आप लो रोजगार आपने करोत बलते, आजीविका मिशन भित्रे सरकार कितरो ट्रेनिंग बले दय से, ट्रेनिंग करुन काम सीख लो पाचे, काम कर तो झमक दय से। आप लोग पुरखती काम के सिकुन कोनी काम धंधा करे से जाले, हुनके काचा माल कम रेट ने दय से, हुनचो बना लो जिनिस चो बिक्री भांजरी वाट करे से, एचो काजे असन लोग चो बना लो जिनिस मन के प्रदर्शनी मन ने पठाउन गुलाय बाटे जहला करे से। जमाए गोट के ग्राम पंचायत बैठक ग्राम सभा बैठक ने आमी जाऊन सुन ले जानवा, एचो नफा धर्मा जीवना उजर होए दे और आमी हरिक ने बलवा।

जमाए एके सुनलास नफा धरा आज गांव पारा चु बाड़ती काजे बनली पंचायती राज। आज चु भाग एथाएथे बाउन धरे से मोचो बाट नुआ भाग संगे फेर होइंदे तुम चु संगे भेंट घाट सेवा जुहार।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे?
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
2: ओ, 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
4: आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम पंचायत की विकास गाथा। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। रात्रि के 9:30 हुए हैं। घुमकली कार्यक्रम में आइए सुनते हैं हीरा सिंह और साथियों के स्वर में भतरी नाट गीत।

0: रानी,
1: हे रानी
0: सुनो रानी नैना देई,
1: सुनो रानी
0: नैना
1: देई,
0: सानो बहने कुला सुंदरी,
1: सानो बहने कुला सुंदरी,
0: सानो बहने कुला सुंदरी,
1: सानो बहने कुला।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।

0: काय भी रे रहांडी,
1: काय भी रे रहांडी,
0: हम ती बात के,
1: हम ती बात के,
0: तू कसन करी काय भी,
1: कसन करी काय,
0: जिला बात के,
1: जिला बात के,
0: ची ची ची ची रे रहांडी,
1: ची ची रे रहांडी,
0: दखनी जानी सुनी,
1: दखनी जानी सुनी,
0: मुई तोर ऊपर मोर ऊपर सौत आइलीस,
1: मोर ऊपर सौत आइलीस,
0: दखनी जिला बनाय देलीस,
1: दखनी जिला बनाय देलीस,
0: तोते

0: ହେଲେ ନନୀ
1: ହେଲେ ନନୀ
0: ତୁଇ ବିତା ବୁତା କରୁଅଛି ହେବେ ତତେ ପାଣି ପଟାଇବି ବାରା ବାରା ଚବିଶ ଗାନା ଘାଗରି କେ ତଥେ ହେଉଅଛି ହେଇ ପଚରି ଚୁଆରେ ଯା ପାଣି ଯଦି ପାଣି ନ ଆଣିବୁ ତତେ ଘର ବାହାର କରିଦେବି ହଁ ଦିଦି ମତେ
2: घुमकली कार्यक्रम में आप सुन रहे थे हीरा सिंह और साथियों के स्वर में बत्री नाट गीत। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। रात्रि के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। कार्यक्रम का प्रारंभ हम कर रहे हैं गुलाम अली के गाए गीत।

अगला गीत है हंसराज हंस की आवाज में। गीतकार हैं असी इसपुरी और संगीतबद्ध किया है चरणजीत आहूजा ने।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: आइए अब सुनते हैं प्रवीण भारद्वाज का लिखा और हरीश टंडन का गाया गीत।

अब हम आपके लिए लेकर आए हैं जसविंदर सिंह का गाया गीत। गीत रचना है पायम सईदी की और संगीत से संवारा है कुलदीप सिंह ने।

कार्यक्रम का आखिरी गीत है राम शंकर की आवाज में, बोल अमीन बादशाह के हैं और सुरों से सजाया है दीपक पंडित ने।

आप सुन रहे थे गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। रात्रि के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत है अरिजीत सिंह की आवाज में। गीतकार हैं इरशाद कामिल, संगीतकार हैं प्रीतम एवं फिल्म का नाम है डंकी।

0: अगला गीत है फिल्म पुष्पा 2 से, आवाज है श्रेया घोषाल की, गीत रचना है राखी बालम की और संगीतकार हैं देवी श्री प्रसाद।
1: पत्थर है वो मुझे रोक टोक के।

आइए अब सुनते हैं सलार सीज फायर फिल्म का गीत मेनका पौडेल की आवाज में। बोल रिया मुखर्जी के हैं और धुन तैयार की है रवि बसरूर ने।

अगला गीत हमने लिया है जावेद अली ऋचा शर्मा के स्वर में, फिल्म मैदान से। गीत रचना है मनोज मुंतासिर की और संगीतबद्ध किया है हिरल विरादिया ने।

अगला गीत हम लेकर आए हैं फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ से। स्वर है विशाल मिश्रा का और बोल है इरशाद कामिल का।

आइए सुनते हैं अब फिल्म किसी का भाई किसी की जान का वह गीत जिसे आवाज दी है कमाल खान और पलक मुचल ने। बोल सभी।

कार्यक्रम का अंतिम गीत है गुलराज सिंह और अदिति पॉल की आवाज में, फिल्म काकुदा से मनोज यादव का लिखा गीत है और तर्ज बनाई है गुलराज सिंह ने।

0: इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को हैं। समाचार अब हम क्रमशः हिंदी एवं अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में वीवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
2: The message I shared then at VivaTech 2021, where convention fails, innovation can help. India has been going through a rapid transformation that is powered by technology. From creating the world's largest digital identity system to the world's largest digital

0: payment platforms. We are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture and more.
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि उथल-पुथल भरे इस दौर में प्रौद्योगिकी का लाभ सभी को मिलना चाहिए। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा। इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत के प्रति भारतीय समुदाय का गहरा लगाव और भारत फ्रांस के मजबूत संबंधों में उनका योगदान प्रशंसनीय है। श्री मोदी ने कहा कि हर देश ऐसे सहयोगी तलाश रहा है जिस पर दीर्घकाल तक भरोसा किया जा सके। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में भारत विश्व में एक विश्वसनीय साझेदार के तौर पर उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल फ्रांस यात्रा के मुख्य नतीजों की जानकारी दी है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने पेरिस में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा तीन मुख्य स्तंभों, व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर केंद्रित रही। उन्होंने बताया कि भारत और फ्रांस ने मिलकर नीस में भारत इनोवेट्स पहल शुरू की है, जो भारतीय डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए वैश्विक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर आज अपना फैसला सुरक्षित रख लिया जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसलों को चुनौती दी गई है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने ईरान और अमरीका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक दस्तावेज और सशक्त ईरान का संदेश बताया है। उन्होंने कहा कि शांति केवल आपसी सम्मान के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। यूक्रेन ने रूस के एक तेल शोधन संयंत्र पर हमला किया है। एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार ऐसा हमला हुआ है। रूस के रोस्तोव क्षेत्र में भी अन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। रूस ने 550 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन नष्ट कर दिए। हमले के बाद मॉस्को के 4 हवाई अड्डों से उड़ानें रोक दी गई। मीनाक्षी हुड्डा चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मीनाक्षी ने पोलैंड की नतालिया कुचेवस्का को 5-0 से हराया। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर चुकी हैं। उधर मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खरब और अस्मिता चलीहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मुस्कुरा रहे होंगे और इस खूबसूरत शाम का आनंद ले रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का आज के सुहानी सी शाम में आपके और हमारे।

0: दूसरे की नियत पर संदेह नहीं करते, वे जानते हैं कि सामने वाला उनका बुरा नहीं चाहेगा।
1: बिल्कुल, लेकिन कई बार लोग दूसरों की बातों